0: कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे ये जानेंगे कि ये पर्टिकुलरली खास तौर पे किस अंग की प्रॉब्लम है। तो इसका वेरवा आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कि बीमारी का सबसे छोटे से छोटा लफ्ज जो है जिससे हम बीमारी को एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं दर्द, अंग्रेजी में बोलते हैं पेन। सबसे पहली बात, किसी भी अंग में कोई भी खराबी आ जाती है तो फिर हम सबसे पहले क्या कहते हैं, पेन है, दर्द है। या
1: सीमा साहब आ जाइए,
0: फिजियोलॉजी बोलते हैं। जब हमारे शरीर की नॉर्मल क्रिया फिजियोलॉजी की क्रिया पैथोलॉजी में यही होती है, यानी हमारा अंदर का सिस्टम सबसे पहले फंक्शनल तौर पर डिस्टर्ब होता है, उसके बाद फिर उसमें टिश्यू चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, और टिश्यू चेंजेस का फिर आगे आगे चलन होता है कि वो कैसे कैसे डिटोरिएट हो रहा है, उस सब का एक्सप्लेनेशन मैंने आप सबके सामने बहुत बार रखा है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि भाई नॉर्मल चलन को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं, अब नॉर्मल चलन को हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं। नॉर्मल चलन का कन्वर्ट हो जाना दर्द कहलाता है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारी फिजियोलॉजी चेंज होकर पैथोलॉजी में चलेगी।

इजी। अब नॉट इजी और दूसरा पेन हमने कहा कि पेन है, अब नॉट इजी है तो आप उसे पूछेंगे ना भाई क्यों नहीं, यार मैं उदास हूं। अब तुम उदास हो तो क्यों उदास हो बताओगे ना कुछ ना कुछ, अब मेरा मूड ठीक नहीं है, है? या क्यों नहीं ठीक है तो वो आप बताएंगे ना। इस वो जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री के हमने अलग अलग नाम रख दिए हैं बीमारियों के, इसलिए इतने ज्यादा नाम हो गए हैं कि जो आप बता रहे हैं उसको हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। वैसे डिजीज एक ही है, एक शरीर में एक रूह है, या ऐसे कहें जान एक ही है, उस पे एक ही बीमारी आ सकती है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। कहां पर हुई है रुकावट, कैसे हुई है रुकावट, उसी रुकावट की वजह से कहां पर रुकावट आ गई है, कौन सी रोड पे रुकावट आई है, हाँ जी रुक तो गई है लेकिन कौन सी रोड पर रुकावट आई है, किस किस गांव की या शहर की जो ट्रैफिक रुक गई है, वो उसके हिसाब से फिर हमने इसके अलग अलग नाम बीमारियों के रख दिए हैं। तो इसलिए पेन का जो एक्सप्लेनेशन हमारे सामने है वो है ये। अब इतनी लंबी बात मैंने आपके साथ पेन की कर दी कि भाई पेन को आप समझने को आसानी रहे, ताकि बीमारियों से पहले उसको शॉर्ट करना हो तो यहाँ तक आप पहुंचेंगे कि असल में किसी भी अंग में, लोग बोलते हैं डायबिटीज है ना, अब तेरी पेंक्रियाज में कोई नुक्स हो गया होगा, अब डॉक्टरों ने ढूंढ लिया कि नहीं नहीं यार पेंक्रिया जो शुगर के लिए अकेला पेंक्रियाज थोड़ा जिम्मेवार है, इसके लिए तो लिवर भी जिम्मेवार है, वो ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है, ग्लाइकोजन रिलीज करता है, तो इसका भी तो काम। तो मेरे मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता है, एक बीमारी के लिए हम एक अंग को जिम्मेवार नहीं समझते, बहुत से अंग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी रुकावट की वजह से आगे जाकर जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं असल में उसको हम उसके अंग के नाम लगा देते हैं कि भाई ना ये तो पेंक्रियाज का इफेक्ट है, शुगर हो गई है ना पेंक्रियाज का इफेक्ट है, लेकिन अभी हम जानते हैं कि नहीं, पेंक्रियाज का जो इफेक्ट है हमारे मेटाबॉलिक रेट के साथ संबंधित है, हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमारे थायराइड के साथ संबंधित है, और इन सब क्रियाओं के हिसाब से फिर इसका मतलब जब हम ये जान जाएंगे कि भाई कला जो पेंक्रियाज का तो इफेक्ट नहीं है, तो फिर हम अकल पेंक्रियाज के लिए ये इंसुलिन तो नहीं दी जाएंगे ना, हम तो कुछ और करेंगे ना, क्योंकि उसके पीछे की कहानी हमें जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर ठीक है वहीं पर जाकर अटैक करेंगे, उतनी ही बात करेंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम पेन को समझते क्या हैं, पेन जिस टारगेट पे हमें महसूस हो रही है उसका एक्सप्लेनेशन देना अलग बात है, उसका नामकरण बात का रखना वो अलग बात है, नामकरण फिर हम उसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से भी कहां पर है कैसे है इसके हिसाब से रहते हैं। और यहां तक मैं पहुंचना चाहता था और आप लोगों को ये बताना चाहता था कि हम लोग पेट के एरिया में पहुंच गए थे, और पेट के एरिया में मैंने इस पेट को 9 भागों में बांट दिया था, और 9 भाग मैं जब बोलता हूं तो मतलब मैंने नहीं किया, एनाटॉमी में जो हमारे स्कॉलर थे जिन्होंने इस बॉडी को चीर चीर फाड़, तो हम लोगों ने भी बहुत किया, पता नहीं कितने डेड बॉडी चीर दी हम लोगों ने अलग अलग अंगों के, लेकिन जिन्होंने इसको शुरुआती में आइडेंटिफाई किया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और उनका कही हुई बात या वेरीफाई की हुई बात को ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब वो उन्होंने जो क्या कहा है। तो मैं इन 9 भागों का वेरवा जब आप सब लोगों को दिया तो मैंने ये बताया था कि एक एक भाग में कई कई अंगों का योगदान है, और कई कई अंगों का योगदान होने की वजह से इस पेन का करेक्टरिस्टिक बदल जाता है, इस तरह की पेन है। जैसे अभी हमने नर्व्स की बात कही ना, तो नर्व्स का पेन जो है बर्निंग टाइप का होता है, क्रंच लगने की तरह होता है, और अगर किसी वेन्स में टाइप में इस तरह की कोई चीज हो गई तो उसमें हमें प्रेशर हैवीनेस टाइप का दर्द महसूस

0: अगर हमारे लिम्फ चैनल में कुछ ऐसा हो गया तो स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी और दर्द होनी शुरू हो जाएगी उस जगह में जहां पर ज्यादा इकट्ठा हो गया। और अगर आर्टरी में खुदा ना खास्ता आर्टरी में ऐसा कुछ हो गया तो वो एक सीरियस बात हो जाएगी, जहां सप्लाई नहीं होगी किसी जगह की, रुकावट आ गई है तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह का स्टार्वेशन होगी। किसी अंग में आर्टरी की सप्लाई नहीं जा रही है तो स्टार्वेशन होगी, तो उस तरह के साइन हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इससे हम उसका अंदाजा लगाते हैं कि भाई इस एरिए में कौन कौन से अंग हैं और उन अंगों में आर्टरी वेन्स लिम्फ नर्व तो सब कुछ है, तो रुकावट किसने आई है। और इसी तरह हरेक अंग उसको अपनी तरह से ही रिप्रेजेंट करता है। पंक्रियाज में दर्द होगी तो अलग तरह से रिएक्ट करेगी, इंटेस्टाइन में दर्द होगी तो अलग तरह से रिएक्ट करेगी। किसी भी अंग में कोई कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की आ जाएगी ना तो वो अलग तरह के, जैसे हार्ट की बात है सब सभी लोग जानते हैं, हार्ट अटैक हो गया ना तो सडन क्रूशियल, उसको बोलते हैं क्रूशियल पेन, सडन क्रूशियल पेन होगी और फिर वो जैसे रुकती नहीं, ट्रेन गई है तो रुकती नहीं है, इस तरह का हालात बन जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है। और इसी तरह अगर नर्व के साथ कोई जुड़ी हुई बात है तो वो भी करंट की तरह बहुत तेज तेज चलने वाली का बात है। तो इस तरह अब हम चलेंगे एब्डोमेन के अलग अलग हिस्सों के अंगों के बारे में कि अगर उनमें कुछ हो, अब बेस आप जान गए, बेस तो आप जान गए कि दर्द है या तकलीफ है, तो इसका मतलब है कि उस अंग में कोई रुकावट आ गई है। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया। हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया जो मैंने बताया लिवर के, उसको हेपेटिक एरिया भी बोलते हैं, लिवर का एरिया, और हाइपोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया बोलते हैं लंग्स को, हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया बोलते हैं कि लंग्स के नीचे का एरिया है। ये बात भी मैंने आप सब लोगों को बताई थी कि जरूरी अंगों को प्रोटेक्शन देने के लिए कुदरत ने ये पसलियों का केज बना दिया, पिंजरा बना दिया, ताकि इसको सेफ्टी में रखा जा सके। लेकिन लिवर या तिली या मेदा, ये अंग तो पेट अब्डोमेन के हैं लेकिन इनकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है, जिसलिए कुदरत ने इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए कहा कि भाई थोड़ा सा हिस्सा मांग ले यार, मेरे पास अब ट्रैफिक ज्यादा आ गई है, मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं, तो मैं तेरी भाई पार्किंग लॉट में जरा अपनी गाड़ियां खड़ी कर दूंगा। तो इसी तरह ये जो लिवर है या तिली है, दोनों तरफ पसलियों के नीचे हैं। हालांकि पसलियां चेस्ट का हिस्सा हैं, लेकिन चेस्ट से जैसे जगह उधारी लेकर लिवर को फिक्स कर दिया एब्डोमेन में, तिली को बाई तरफ फिक्स कर दिया एब्डोमेन में, और उनको कहा कि भाई तुम इसी जगह में अपनी कारें खड़ी कर लेना, पसलियों के नीचे नीचे रहना। अब पसलियों के बाहर आ जाता है ना लिवर तो प्रॉब्लम हो जाती है, बोलते हैं कि प्रॉब्लम होगी इसको। अब पसलियों के बाहर आ जाती है ना तिली तो हम सोचते हैं कि नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये तो घर में तो साफ करने वाली जो कंपनी है तो फेल हो गई है, तो बहुत काम खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए इनको उन्होंने रखा है, तो पेट के ऑर्गन है लेकिन इनको रखा है पसलियों के नीचे प्रोटेक्शन के लिए कि भाई यहाँ तुम रहो, तुम बहुत जरूरी का अंग हो। लेकिन इन दोनों के बीच में जो हमारा एक एरिया था, क्योंकि ऊपर वाले तीन एरिया थे, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जिसमें लिवर था, बाई तरफ था स्प्लीन का, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया जिसको स्प्लीनिक एरिया भी हम बोलते हैं, बीच का जो एरिया बच गया था उसको हमने कहा था एपी गैस्ट्रिक एरिया। एपी का मतलब होता है ऊपर, गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक, स्टोमक के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हमने एपी गैस्ट्रिक कहा था। और ये बात अभी इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ को मैंने पहले कही है कि इस एक हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में अकेला लिवर नहीं है, राइट साइड में अकेला लिवर नहीं है, लिवर के नीचे गाल ब्लैडर है आप सभी जानते हैं, और लिवर के साथ गाल ब्लैडर का कनेक्शन जो है वो बाइल डक्ट की वजह से है, वो कॉमन बाइल डक्ट उसको हम बोलते हैं। फिर वहां से एक और डक्ट है जो सीधा लिवर से आंतरियों में जाता है बाइल को लेकर, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो सीधा बाइल, जितना बाइल 24 आवर बन रहा है, ये हमें जानना होगा कि बाइल 24 आवर बन रहा है और लगातार बनता हुआ वो स्टोर होता रहता है गाल ब्लैडर में, कॉमन बाइल डक्ट में, और जो हम खा रहे हैं उस वक्त बाइल बनता है तो वो सीधा आंतड़ियों में जाना शुरू हो जाता है। ये यहाँ का नक्शा है हमारे पास। अब मैं ये कह रहा हूँ कि गाल ब्लैडर भी हुआ, लिवर भी हुआ इस हालात में, और यहाँ पर इंटेस्टाइन्स भी हैं। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन नीचे से ऊपर को आ रही है तो कुछ हिस्सा उसका असेंडिंग कोलन जिसको हम बोलते हैं, ऊपर चढ़ा चढ़ने वाला लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में दिया जाता है। और फिर यहाँ पर इसका एक मोड होता है और टर्न होता है, उसको हम हेपाटिक फ्लेक्सर बोलते हैं। हेपाटिक का मतलब होता है लिवर, कि लिवर की जगह से वो बाईं तरफ चला जाता है, और जो बाईं तरफ जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। तो ट्रांसवर्स कॉलन का भी थोड़ा हिस्सा इस एरिए में आता है। अब हम जब दर्द की बात करेंगे, पेशेंट तो आ गया, उसने तो कह दिया कि मुझे यहाँ पर दर्द होती है जी, दाहिने साइड में उसने हाथ उठा दिया, हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में दर्द में उसने लगा दिया। अब हम कैसे करेंगे कि भाई कैसे जानेंगे इस बात को। अब अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर तो रुकावट हो गई है, बाइल डक्ट में बाइल नहीं जा रहा है, तो एकदम दोनों तरफ तो हो नहीं सकता, एक तो सीधे जाने वाला है, एक गाल ब्लैडर में जाने वाला है, तो गाल ब्लैडर में तो जा ही रहा है ना, स्टोर बढ़ रहा है ना, तो गाल ब्लैडर आपका नीचे धक जाएगा। एक बोरी में आप लिफाफे में जितना भी चीज डाल सकते हैं नॉर्मली रहती है, अगर उससे ज्यादा आ जाएगी तो क्या होगा, वो नीचे लग जाएगा ना। वैसे मैंने ये कहा कि इसको पसलियां के नीचे रहना चाहिए, लेकिन अब कोई रुकावट आ गई है, वो दर्द हो गई है, उसकी वजह से ये जो बाइल बन रहा है ये बाइल सीधा गाल ब्लैडर में जाएगा, तो गाल ब्लैडर जरूर से ज्यादा भरेगा। या दूसरी बात ये है कि इवन आप खुराक खा, कई लोग बोलते हैं भूख ही नहीं लगती है, तो भूख ना लगने का भी मतलब है कि बाइल तो उसमें जा ही नहीं रहा है, खुराक में जा ही नहीं रहा है, डाइजेशन जो उसको करना था वो कर ही नहीं रहा है, भूख लगेगी कैसे, नहीं लगेगी भूख, इसलिए वो वहां पर आकर रुक गया है। जब वो रुक गया है तो दर्द के जो ट्रांसमिशन होगा वो मैं आपको बताने लगा। पहली बात, गाल ब्लैडर भर गया ज्यादा तो पसलियों के नीचे से बाहर आ जाएगा, और पसलियों के नीचे से जो बाहर आ जाएगा और उसको हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं तो पता चलता है, जैसे बोलते हैं ना, अच्छा भाई सांस खींचो, ऊपर सांस खींचा, फिर सांस छोड़ो, जब आप सांस छोड़ते हो तो गाल ब्लैडर को नीचे प्रेस होना चाहिए ना, तो आप जब हाथ लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर गाल ब्लैडर आ गया, जिसको नहीं होना चाहिए था, इसको तो लिवर के ऊपर वाला जो डोम बना हुआ उसके अंदर अंदर रहना चाहिए था, ये बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाल ब्लैडर में एक्सेस ऑफ जो बाइल है वो जमा हो गया है। अब एक्सेस ऑफ जरा जूस उसका जो भी आ रहा है लिवर का, जिसको हम बाइल बोलते हैं, जमा हो गया है। तो जो चीज साधारण तौर पे आप घर में स्कंजी भी बनाकर रख दोगे ना, थोड़ी देर रख दो तो आप देखोगे कि नीचे चीनी जो है उसमें मिक्स की है ना, वो नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें एक्सेस ऑफ बाइल आ गया है तो अल्टीमेट इसमें कॉन्सेंट्रेशन बननी शुरू हो जाएगी, संगना होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के हालातों में आमतौर पे पथरी बननी स्वाभाविक हो जाती है और पथरी बननी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हमारे कॉमन बाइल डक्ट में, जहां लिवर को लेकर आंतड़ी को लेकर खून जा रही है, वो जा ही नहीं रहा। जब भी वो नहीं जा रहा है और उसका एक तो दर्द तो इस एरिया, क्योंकि पेशेंट ने बता दिया कि दर्द यहाँ पर होगा, हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये दर्द किस बात की है, ये इसकी आंतड़ी की दर्द है या ये इसकी लिवर की ही दर्द है, किसके साथ संबंधित है, तो फिर हम बोलते हैं स्टूल। जैसे ही बाइल हमारे स्टूल में मिलता है और बाइल के मिलने की वजह से इसमें क्या होता है, जितना भी आंतड़ियों से खून इकट्ठा होके, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, जितना भी खून इकट्ठा होके आंतड़ियों से, अकेला आंतड़ियों के, क्योंकि बाकी खून हार्ट से जाता है हर एक अंग को, वहां से वापस आता है सीधा उसी रास्ते से उसको वेन की तरह से, लेकिन आंतड़ियों का खून गुदा के रास्ते से लेकर ऊपर तक जितना भी आंतड़ी का एरिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एरिया है, उस सब का खून वापस उसी तरह हार्ट को नहीं जाता, वो सारे का सारा जो खून है वो लीवर को जाता है कि भाई इसकी स्क्रूटनी करेंगे, इसकी चेक करेंगे कि क्या क्या चीज हार्ट को जाने वाली है क्या नहीं जाने वाली है, उसको चेक करेंगे, और जितना भी आंतड़ियों का खून गुदा से लेकर ऊपर तक का लिवर की तरफ जाता है उसको हम अलग नाम दे दिया हमने, पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम का जितना खून लिवर में जा रहा है उसमें जितनी भी चीजें जा रही हैं, जितनी शुगर कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, फैट जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स जा रहा है, शुगर जा रही है, ये आयरन जा रहा है, मिनरल्स जितने भी है वो जा रहे हैं, तो जो मैं सिर्फ आपको वही चीज बताने लगा हूँ कि अब ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, लिवर का जूस जो आंतड़ी में जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा, उसकी निशानी क्या है, हम कैसे जानेंगे कि अभी ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो गई है? तो अगर वो नहीं जा रहा, स्टूल का कलर बदल जाएगा, व्हाइट येलो स्टूल आना शुरू हो जाएगा, अगर वैसे तो स्टूल का कलर ब्राउनिश है ना, ये व्हाइट येलो हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इसमें जो हमारा खून ये जो जा रहा था ना, जितना भी खून आंतड़ियों का लिवर में, मैंने कहा आपको जा रहा है, ये लिवर को जाने वाला जो खून था इसमें जितना आयरन गया था, जो आपने खाया, हमने जो खाया उसमें जितना भी हमारा आयरन गया था वो आयरन लिवर में जाकर टूट जाता है, टूट कर उसके बिली रूपन बिली बर्डन बनते हैं, जो हमारी आंखों को कलर देते हैं, जो हमारी चमड़ी को कलर देते हैं, किसकी चमड़ी किस बहुत गोरा है, बहुत काला है, किस तरह की आंखों का रंग है, या पेशाब को कलर देता है, या हमारी जो स्टूल है, मल है, इसको कलर देता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो, लिवर तो काम कर रहा है लेकिन लिवर में जो पीछे बैकलॉग लग गया है वो जा नहीं रहा है, लिवर में हैवीपन आ गया है, पेशेंट बोल रहा है कि यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, और हम देखेंगे कि स्टूल किस रंग का आता है, और स्टूल कैसा आ रहा है, व्हाइट कलर का, पेस्ट्री लाइक येलो टाइप कलर आ गया। क्यों? क्योंकि जितना भी आयरन टूट कर बिली रूबन बिली बर्डन वहां जाना था, उसने उसको रंग देना था, वो अब रंग नहीं दे रहा है, तो ये चीज हमें इंडिकेट करेगी कि ये प्रॉब्लम इसकी लिवर के साथ कंसर्न है। दूसरी बात, ये कलर अकेला स्टूल का चेंज नहीं करेगा, कलर आपकी चमड़ी का भी चेंज हो जाएगा, कलर आपकी आंखों का भी चेंज हो जाएगा, कलर आपके यूरिन का भी चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या ये फर्स्ट डे इन द बिगिनिंग वेरी फर्स्ट डे, वो क्या अभी डॉक्टर के पास आपको जाना है, डॉक्टर तो फिर चेक करेगा, जितने भी टेस्ट करवाएगा या और कुछ करेगा, उसके बाद कहेगा कि भाई तेरे तो भाई कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या तेरे तो भाई ये पथरी बन गई है, या गॉल ब्लैडर में ये हो गया है। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज पे भी देखेंगे, अब रोजाना ही चेक करेंगे, तो यार मेरा पेशाब जो है ना अब तो पीले रंग का हो गया है, हालांकि पीले से चलते चलते ये ब्राउन कलर का, डीप ब्राउन कलर का भी हो जाता है, इस तरह का भी होना शुरू हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो इस हालात में ऐसा होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी निशानियां क्या हमें बताएंगी कि पेशाब का रंग ऐसा हो गया है, और स्टूल भी पहले तो ब्राउन होता था, अब तो मेरा व्हाइट कलर का जो है स्टूल हो गया है, और ये सब बात कहेगी कि भाई जितनी ये जो भी तुम दर्द बोल रहे हो ना, मेरा दाहिने साइड में पसली के नीचे दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आपके लिवर के साथ है। अब दूसरा अंग वहां पर कौन है? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, गाल ब्लैडर में कंजेशन हो गया है। गाल ब्लैडर पहली तो बात हम यहां से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये अगर नॉर्मल भरा हुआ है तो पसलियों के नीचे नीचे रहेगा, अगर ज्यादा भर गया है तो वो पसलियों के नीचे लटक जाएगा, फैला है ना, नीचे लटक जाएगा। उसके बाद जब भी आप उसको टच करेंगे, मर्फी साइन उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, मर्फीज साइन उसका नाम हमने रखा हुआ डॉक्टर मर्फी की वजह से। और जब हम इसको, मैंने आपको कहा कि सांस लो, सांस ले लिया, सांस छोड़ो, जब छोड़ते हो तो उसको नीचे जाना चाहिए, तो आप प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कुछ हार्ड सा महसूस हो रहा है और ये गाल ब्लैडर की निशानी है। दूसरी बात, गाल ब्लैडर में जो मूवमेंट होती है, जैसे पेरिस्टाल्टिक मोशन की बात मैंने आपको कही, गाल ब्लैडर भी कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। और जिस वक्त आप खाना खा रहे हैं उस वक्त तो गाल ब्लैडर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, क्योंकि ना कोई चीज आ रही है ना जा रही है, वो जो उसके पास है वो वही है। लेकिन आप रात को जब सोते हो ना, रात को सोते हो उस वक्त तो खाना नहीं ना खा रहे, आप लेटे हुए हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो उस हालात में ये जो गाल ब्लैडर है इसमें सब जा रहा है, जो भी लिवर बना रहा है वो तो 24 आवर बना रहा है, वो बना रहा है, उसमें जा रहा है, वो तो पहले ही भरा हुआ है बेचारा और जा रहा है। तो ऐसे ही बोलते हैं, जैसे गाल ब्लैडर की जितने भी दर्द है ना, उसको हम वो बोलते हैं मिडनाइट पेन, जैसे जैसे कोई चीज चलती है ना उस तरह उसका नाम रख देते हैं कि मिडनाइट पेन। अब खा के सो गए, मुर्ग मुसल्लम खाया था, जो भी कुछ खाया था खा के लेट गए, और उसके बाद क्या हुआ कि वहां तो हम तो बोलते हैं कि अब खा नहीं रहे हैं, जो जो सीधा कॉमन बाइल जा, कोई आंतरिक को जा ही नहीं रहा है खून, बाइल तो बाइल जा रहा सीधा गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर बेचारा पहले से भरा हुआ है या उसमें सूजन हो गई है भरे ज्यादा होने की वजह से, कुछ भी हो गया है, तो अल्टीमेट वो पेरिस्टाल्टिक मोशन, जैसे वो उसकी चलती चलती है, आप सोए हुए मिड नाइट खा पी के और उसकी पेरिस्टाल्टिक मोशन से आपको भरा हुआ है बेचारा, और इसलिए इसका नाम रख दिया मिड नाइट पेन। दहने साइड पसलियों के नीचे अगर आपको मिड नाइट दर्द होती है तो आप ये समझें कि ये गाल ब्लैडर की दर्द है, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट में तो आपका जो बाइल जा रहा था ना, इसलिए स्टूल का कलर चेंज नहीं होगा, गाल ब्लैडर में होगा। तो गाल ब्लैडर का दर्द अगर लिवर से सेपरेट आपने कर दिया तो उसमें फिर पीवीए, जिस पंजाबी, हाँ ये आप कह सकते कि पंजाबी पीवीए की निशानियां तो नहीं है, आंखें नहीं पीली हुई हैं, चमड़ी नहीं पीली हुई है, पेशाब आपका नहीं पीला हुआ है, क्योंकि वो जो कॉमन बाइल डक्ट में तो उतना जा ही रहा था ना। अब स्टोरेज की बात हो रही है तो स्टोरेज में आपको मिड नाइट पेन होगी, जब जो चीज बना रहे हैं वो बाहर जा रही है, कोई कंजेशन नहीं आपकी फैक्ट्री में, सब खाली है, कोई बात नहीं, लेकिन जब बाहर जा ही नहीं रही, फैक्ट्री आपकी चल रही है, वो तो बना ही रही है, वो स्टोर में रखेगी, अब स्टोर में तो जगह नहीं है, तो ये दर्द आमतौर पे इस तरह शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं ये गाल ब्लैडर की दर्द है। तो दो चीजें मैंने आज आप लोगों को ये बता दी कि अगर लिवर में दर्द होगी तो क्या होगा, अगर गाल ब्लैडर में दर्द होगी तो क्या होगा, कब होगी, कैसे होगी। तीसरी एक बात और मैं यहाँ पर खत्म कर दूं, इसको एक खाने को मैं खत्म कर दूं, मैंने ये कहा कि इस एरिए में एक पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन का नीचे से ऊपर आ रहा है, यहां से घूमकर बाएं जा रहा है, असेंडिंग कॉलन एंड हेपाटिक फ्लेक्सर एंड पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन। अब क्या है, एंटनी में जो मल मूव कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन। पेरिस्टाल्टिक मोशन कैसे चलता है, जैसे गडोवा चलता है, गडोवे को तो आपने सब देखा, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं, अर्थवर्म जैसे चलता है उसी तरह ही ये आंतरी के में आगे हमारा जो माल है या खुराक है वो आगे मूव करती। अब अगर दर्द का करेक्टरिस्टिक, अगर दर्द का करेक्टरिस्टिक इस तरह मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर को जा रहा है, लिवर की बात मैंने कही थी तो वो दर्द लोकलाइज उस एरिए में था, या कॉमन बाइल डक्ट की बात मैंने कही थी तो वो दर्द लिवर से लेकर सेंटर को जा रहा था, ये दर्द नीचे से ऊपर को आ रहा है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, कुछ रुकावट हो गई, कब्ज हो गई है, किसी भी तरह जो मल है लार्ज इंटेस्टाइन में आकर रुक गया है, या लार्ज इंटेस्टाइन की जितनी भी आंतरियां, जितनी भी उसका दीवारें है ना, उसमें तो ब्लड जा रहा है ना, उसमें भी तो ब्लड जा रहा है, उससे भी ब्लड आ रहा है, वहां भी नर्वस सिस्टम है, वहां भी लिम्फ चैनल, सारा कुछ तो हर एक जगह एक एक सेल में वो जा रहा है, तो वो पेरिस्टाल्टिक मोशन के हिसाब से दर्द रुक रुक कर आएगी। करेक्टरिस्टिक उसका क्या होगा कि नीचे से ऊपर दर्द आई, ऊपर से बाईं तरफ आई, और ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज घूम रही है, रुक रुक कर चल रही है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन। तो पेरिस्टाल्टिक मोशन के हिसाब से अगर दर्द चलती है तो फिर ये लिवर की दर्द नहीं है, ये फिर गाल ब्लैडर की दर्द नहीं है, ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन की दर्द है। तो इस तरह हमने आज एक पोर्शन को आपके सामने क्लियर कर दिया कि अगर लिवर की दर्द होगी तो वो पेरिस्टाल्टिक के हिसाब से नहीं होगी, कंटिन्यूड पेन होगी। गाल ब्लैडर में अगर दर्द होनी शुरू होगी तो वो मिडनाइट को दर्द होगी और कंटिन्यूड दर्द होगी, ठीक है। अब उसकी और निशानियां जो थी वो मैंने जैसे आपको कहा कि अगर लिवर कॉमन बाल डक्ट की बाल आ गई तो आपका जो पेशाब और स्टूल ये जो पीले हो जाएंगे है? और ये जो है चमड़ी का रंग, आंखों का रंग पीला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंतरी में जा ही नहीं रहे। असल तो काम ये था कि चाहे गाल ब्लैडर से जाए चाहे लिवर से जाए, इसको अंतरी में जाना चाहिए, इसको खुराक में शामिल होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो जो स्टूल का रंग बदल जाएगा, ठीक है। सो ये लिवर के साथ संबंधित बात होगी। गाल ब्लैडर की बात मैंने आपको कहा कि आमतौर पर ये दर्द जो है मिडनाइट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस वक्त जो एक्स्ट्रा बाइल जा रहा है गाल ब्लैडर में वो बेचारा तो पहले ही भरा हुआ है, उसमें और तकलीफ हो जाती है, तो फिर ये दर्द आमतौर पर मिडनाइट में शुरू होनी शुरू हो जाती है। तो ये हो गया। तो तीसरी बात मैंने अंतड़ी की आपको बता दी कि अंतड़िया में कहीं भी दर्द होगा तो जिस तरफ अंतड़ी की मूवमेंट हो रही है पेरिस्टाल्टिक मोशन उस जगह को उस तरफ मूव कर रहा है। लहरें जैसे चलती है ना किसी तालाब में किसी नहर में, आप खड़े हो जाओ तो लहरें चलती हैं, उस तरह लहरों के हिसाब से ये आगे मूव करेगी। लेकिन कोई लहर आकर यहाँ पर आकर रुकी आगे मूव ही नहीं कर रही। अगर समुद्र के किनारे पे आप खड़े हो तो लहर तो किनारे तक आती है ना, अगर रास्ते में कोई आगे चीज खड़ी हो जाए, कोई बड़ा जहाज खड़ा हो जाए तो फिर किनारे पर वो नहीं ना आएगी लहर। इस तरह कोई माल या कोई और चीज आके अंतरियों में रुक गई है और वो मूवमेंट वहां पर आके रुक जाएगी और पेशेंट कहेगा कि मेरे को तो यहीं पर ही दर्द है, लेकिन दर्द की इंटेंसिटी का बढ़ना पेरिस्टाल्टिक होगा। जैसे जैसे मूव होएगी उसी तरह वो ज्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, और ये इसका करेक्टरिस्टिक होगा। बाकी और बातें फिर हम अगले प्रोग्राम में आपके साथ साझी करेंगे कि बाकी अंगों में अब बहुत इंपॉर्टेंट अंग है मेदे का, जिसको हम एपिगैस्ट्रिक एरिया बोलते हैं, पैंक्रियाज वहां है, गाल ब्लैडर ये जो ड्यूडेनम वहां पर है, और इसमें जो इसोफेगस का नीचे का एरिया है 1.5 इंच का वो वहां पर है, स्टोमक वहां पर, इतनी सारी चीजें उसमें है, और उसमें ओमेंटम है। ओमेंटम के बारे में भी मैंने तो डिटेल में बता दी, लेकिन आपके लोगों को भी बता दूंगा कि इतनी सारी चीजें यहाँ पर हैं, अब उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हम आपको कल के प्रोग्राम में बताएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये दर्द मेदे की नहीं है, ये पैंक्रियाज की है, ये पैंक्रियाज की दर्द नहीं है, ये ड्यूडेनम की है, ये ड्यूडेनम की दर्द नहीं है, ये कार्डियक ओरिफिस के साथ इसोफेगस की है। ये चीजें मैं डिफ्रेंशिएट करके आप सब लोगों को बताऊंगा कल के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम तो मैं गुरदीप सिंह संधु आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूँ। 9701 सारा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 408-687-1899। किसी भी वक्त की किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी बीमारी का इलाज करवाते थक गए हैं, सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 408-687-1899। और अगर आपको लगे कि इन प्रोग्रामों में कुछ जानकारी आपको मिल रही है जिसका आपको फायदा हो सकता है, तो ये कहें कि ये फायदा और दूसरों को भी पहुंचाएं और ये सहयोग करें इतना कि इन प्रोग्रामों को सुनने के लिए दूसरे लोगों को भी कहें कि वो फेसबुक में मेरे साथ फेलोशिप में आ जाएं, यूट्यूब में आ जाएं, यूट्यूब में मेरा होम्योपैथिक नेचुरल मेडिसिन का जो चैनल है उसमें आ जाएं, या सबरंग रेडियो स्टेशन है, परवार रेडियो स्टेशन है, इसमें किसी भी लिंक से आप इन प्रोग्रामों को रविवारिक कथा के रूप में सुन सकते हैं। आप सबका नाम रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं, कल फिर मिलेंगे। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब, थैंक यू।

0: मुझे मैं मैसेज लो जी मैसेज कर दी डॉक्टर साहब
1: जनहित विच सूचना मशहूर होम्योपैथिक सर्जन डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू उम्र दे 75वीं साल दे विच मेडिकल प्रैक्टिस दे 50 साल पूरे होण ते अमेरिकन इकॉनमी दी सब तो माड़ी हालत होण करके ए ऐलान करदे ने कि हरेक बीमार व्यक्ति जो किसी भी उम्र दे विच किसी भी बीमारी दा इलाज करांदा थक गया है तां जो भी उसकी जेब इजाजत दिंदी होवे ओही दे के इलाज करवा सकता है। बस इना ख्याल रखियो कि मुर्गी भी ना मरे ते अंडे भी मिलदे रहन, इना दे इलाज करन दी समर्था बनी रहे ते थोड़ा घट खर्चे च इलाज हुंदा रहे। कॉल करो 408-687-1899।
2: ਕਰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ

आके अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: नो दोस्तों, अगला गीत सुनते हैं जी, मलकी कीमा। क्या बात है, बहुत फेमस सॉन्ग सी उस टाइम दे विच, बहुत ज्यादा इनू लोगों ने सुनिया। और आप मलकी कीमा थाडे नाल पेश कर दें जी, मोहम्मद सदीक साहब ते रंजीत गोयल।
1: कीमा रांझे दा भतीजा, गढ़ मुगलाने दे सरदार राय मुबारक दी लड़की मलकी दे नाल व्याहया गया। निक्कियां निक्कियां दा व्याह हो गया, जवानी आई तां दोहां दे हुसन जवानी दी चर्चा गली गली महल्ले महल्ले घर घर होण लगी। मलकी दियां सहेलियां मलकी नूं आखदियां, अड़िए मलकी ए तेरा कीमा असीं कोरियां ते बैठा वेख्या सी, बड़ा सोहणा सी, हुण तां गभरू होके होर वी सोहणा लगदा होणा। उधर बचोलन कीमे नूं आख्या करे, अड़े आ कीमिया तेरी मलकी हजारां नहीं बल्कि लखां च इक है, वेंदियां सार इंसान तां की परिंदे वी घट आ के निकलदे। एक दूजे दे हुसन दी तरीफ सुनदे एक दूजे उत्ते आशक हो गए, सबबी मेले हुंदे ने। एक वारी कीमा गढ़ मुगलाने नूं जा रहा, रस्ते दे विच एक खूह दे उत्ते कुछ कुड़ियां पानी भरदियां ने, उहनां विच मलकी वी सी। मलकी दा हुसन वेख के कीमा खूह ते गया पानी मंगदा उहनां कुड़ियां तों, तां उहनां कुड़ियां दी सरदार ओ हुसन दी मलका मलकी नूं तोड़ के जवाब दिंदी है। जरा गौर नाल सुनना की जवाब दिंदी है।

ऐसी कमी पेशी आ गई है और सेल का मतलब ये है कि सेल के किसी उस डिपार्टमेंट में, किसी उस अंग में, किसी उस ऑर्गेनल, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उस ऑर्गेनल में इस तरह की कोई कमी पेशी आ गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि वो काम पूरा नहीं चल रहा है। और इस लिहाज से हमने इस सेल की शिनाख्त करनी शुरू की, और सेल की जब हमने शिनाख्त शुरू की तो फिर हमने ये देखा कि भाई सेल के अंदर जाने के लिए बाहरी एक दीवार है, और बाहरी जो एक दीवार हम देख रहे थे उस दीवार के बारे में, जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन बताया था, वो जो सेल मेम्ब्रेन था उसकी बात मैंने आपसे की थी कि भाई सेल मेम्ब्रेन क्या है, और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन मैंने जो दूसरे अंग्रेजी और पंजाबी के प्रोग्रामों में दी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और उसमें हमने ये कहा था कि ये दो तहों का बना हुआ होता है, दो मेम्ब्रेन होते हैं, उसके बीच में कुछ जगह होती है, और उस जगह में थोड़ा फ्लूइड भरा रहता है, कुछ तरल रहता है, ताकि सेल को काम करते करते कुछ फैलना पड़े, सेल को कुछ बाहर निकालने के लिए सुकड़ना पड़े। अगर सुकड़ेगा तभी ना उससे कुछ बाहर निकलेगा, और फैलेगा तभी ना उसमें कुछ अंदर आएगा, या ऐसे कहें कि अंदर आएगा तो उसको फैलना पड़ेगा, अगर उसको कुछ बाहर निकालना है तो उसको सुकड़ना पड़ेगा। तो ये जो काम उसमें चलेगा, उस काम की वजह से ये दोनों मेम्ब्रेन जो हैं वो आपस में टकरा ना जाए, उससे रगड़ पैदा ना हो, उससे कोई और प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कुदरत ने उसमें एक फ्लूइड रखा हुआ है जिसको हम लोग सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और इस फ्लूइड और इस मेम्ब्रेन के बारे में हमने आप सब लोगों को बता दिया कि ये आमतौर पर प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है, और प्रोटीन और लिपिड की डिफरेंट कंसिस्टेंसी है, अलग तरह का घोल है जो मेम्ब्रेन बनाता है, और अलग तरह का घोल है जो इसके बीच रहने वाला जो लिक्विड है वो बनाता है। तो इस तरह ये पूरे का पूरा मेम्ब्रेन एक दीवार की तरह काम कर रहा है, लेकिन इस दीवार की डिफरेंसेस, इस दीवार का दूसरी दीवारों से फर्क क्या है? दूसरी दीवारों में तो किले की दीवार होती है तो उसमें दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे से ही हम अंदर जा पाते हैं, दरवाजे से ही बाहर आ पाते हैं, लेकिन ये इस तरह का किला है जिस तरह आप अंडा देखते हो ना, तो अंडे को आप देखो तो चार फ्रिज, उसका अंदर का घोल है वो बाहर तो आ ही नहीं रहा है, और अगर बाहर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है दीवार पूरी बंद है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अंदर से बाहर कुछ जाता है तभी अंडा बड़ा होता है, बाहर से कुछ अंदर जाता है तभी अंडा बड़ा होता है। तो ये सब चीजें इस तरह होती हैं, आम अंडे में भी जब मुर्गी के अंदर अंडा रहता है तो भी, या हमारे शरीर के सेल में भी ये जो क्रिया होती है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने की, किसी भी पदार्थ की किसी भी चीज को, उसको हम परमीएबिलिटी बोलते थे। और परमीएबिलिटी के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि ये प्रेशर से काम करती है, प्रेशर से जो उसकी दीवार बन चुकी है, वैसे तो वो सुकड़ी होती है, उसमें से कुछ ऐसा नहीं निकलता। मान लीजिए एक टायर में कोई किल लग जाता है ना, किसी गाड़ी के टायर में एक किल लग जाता है, और किल जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वहां से बाहर निकलेगी हवा, और अगर वो किल बाहर निकाल दिया जाए तो एक लिमिट पर आकर वो प्रेशर रुक जाएगा, कि थोड़ी हवा निकली उसके बाद वो हवा जो टायर में है वो उतनी रुक जाएगी, क्योंकि तब तक इतना प्रेशर अंदर नहीं रहा कि वो उस सुराख को जहां पर कील लगा हुआ था उसको डायलेट करके तो हवा बाहर निकल सके। तो इसी तरह की इस चीज को भी हम परमीएबिलिटी बोलते हैं। दूसरी बात मैंने इसमें एग्जांपल दी थी कि हम छाछ छानते हैं ना, दूध से बनी हुई, दही से बनी हुई छाछ जो होती निकलती है, और उसको छानते हैं तो जैसे ही हम ज्यादा प्रेशर देते हैं उससे और लिक्विड निकलता। पहले तो हम कपड़े से छानते थे ना, आजकल तो अलग अलग तरीकाकार आ गए हैं, लेकिन उस वक्त हम कपड़े से इसको छानते थे तो कपड़े को जैसा ही आप प्रेशर देते थे उसी तरह ही इसमें वो प्रेशर के साथ वो जो धागे हैं कपड़े के, उस वैसे तो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भी आप उसको प्रेशर डालोगे तो धागों के अंदर जो जगह बनेगी
उससे लिक्विड बाहर निकलेगा। यही प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर घटित होता है और इस सेल के अंदर घटित होने वाले प्रोसेस का नाम है हमारा के परमीएबिलिटी। इस परमीएबिलिटी की वजह से ही सेल बढ़ता है, सेल कम होता है, छोटा होता है। ये ऐसे कहें कि हम लोग खुराक खाते हैं, हम लोग जब खुराक खाते हैं तो खुराक हमारी हजम होकर आंतड़ियों से खून में शामिल होती है। उसका प्रोसेस मैंने आप सब लोगों को बताया है कि कैसे हम खुराक खाते हैं और उसमें से कैसे वो आंतड़ियों से हजम होकर और फिर खून में कैसे मिलती है। वैसे ये पूरा एक प्रोसेस था, एक सिस्टम था जो मैंने कई बार इसमें लेक्चर किए, आगे आने वाले समय में फिर दोबारा ये हम बताएंगे। लेकिन अभी इतना जान लें क्योंकि हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं और वो प्रेशर से खून में रच गया। जितना जितना भी एक्सट्रैक्ट उसका निकला हमारी खुराक का, हमने क्या खाया, कैसे खाया, उसमें जितना भी एक्सट्रैक्ट चाहिए हमें खून में मिलने के लिए, चाहिए इस शरीर को और बड़ा तमीर करने के लिए या इसकी जो टूटन हो रही है, टूटबाजी हो रही है उसको रिकवर करने के लिए जो चीज हमें चाहिए, वो तत्व इस खुराक से निचड़ कर खून में शामिल होता है। और जब ये खून में शामिल होता है तो फिर ये अलग अलग जगहों पर खून के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, हमारे जो आर्टरीज हैं इसमें प्रेशर बढ़ता है, इसमें टेंशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो इसकी वजह से सेलों के अंदर ये खुराक पहुंच जाती है। सेल के अंदर प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर खुराक खाने के बाद बढ़ जाता है, वो अंदर चला जाता है। जैसे ही एक से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल, तीसरे से आगे के ट्रिलियन सेल हैं हमारी बॉडी में और ट्रिलियन सेल में ही ये क्रिया उसी वक्त होनी शुरू हो जाती है, इन ए मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। और जब उसके बाद सेल जो हैं इसमें से आई हुई खुराक को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसमें जो बाकी वेस्ट बच जाता है पूरे का पूरा, हालांकि वेस्ट तो आंतड़ियों ने भी निकाल दिया था और अब जो उसमें बिल्कुल प्योरीफाइड खुराक थी वो ही निकाली थी, लेकिन जैसे हम लोग दही से मक्खन बनाते हैं तो फिर मक्खन को और प्योरीफाई करते हैं, ईट पर रखकर वो घी बन जाता है। ठीक इसी तरह ही हमने खुराक से बिल्कुल प्योरीफाइड वो मक्खन की तरह निकाला और खून में मिला दिया और खून के बाद फिर वो सेलों में गया, सेलों में प्योरी उसकी और प्योरिटी जो शामिल हुई उसमें फिर वेस्ट बचता ही है। वो जो वेस्ट बचता है जैसे हमारे मक्खन के ऊपर जो छाछ थोड़ी और आ जाती है तो उसको निकालते हैं, इसी तरह वो सेल जो है निकालता है। सेल कैसे निकालता है, एक तो खुराक आ रही है, दूसरा उसका गार्बेज बच गया है, अंदर का प्रेशर जो बढ़ जाता है। जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली अंदर से चीजें बाहर जानी शुरू हो जाती। तो इसी तरह वो जाने वाला खून, वापसी खून जिसको हम वेनस सर्कुलेशन बोलते हैं, वेनस सर्कुलेशन में ये वापसी वाला गार्बेज जाना शुरू हो जाता है, फिर वो जगह जगह पहुंचता है। इसी तरह ही जो सही गार्बेज निकलना है, पहले तो मल त्याग से निकल गया या पेशाब से निकल गया, अब जो ऐसे आया है इस तरह का गार्बेज ज्यादातर जो है वो पसीने से या सांस से निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का गार्बेज निकलने का ये तरीका कार था, ये बात हमने मेम्ब्रेन के बारे में बताई थी। और मेम्ब्रेन के बारे में हमने ये बताया था कि मान लिया जाए ये दीवार खराब हो जाए, इस दीवार में सुराख हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि बाहर से हरेक चीज जबरदस्ती अंदर चली जाएगी। या ऐसे कहें कि कोई ऐसी चीज हमने खा ली जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ गया, टॉक्सिन हो गया, जहरीला मादा हो गया। जब दवाई खाने के बाद आप महसूस करते हो ना कि लगता है मुझे दवाई फिट नहीं बैठी, एलर्जी सी होगी है, घबराहट सी हो रही है, इसका मतलब क्या होता है कि उस दवाई में जो चीज आपके शरीर में अंदर जा रही है उसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसकी वजह से वो खून में शामिल हुई, खून से सेलों में शामिल हुई, सेल उसको निकालना चाहता है, निग्लेक्ट करता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तभी हम लोग घबराहट महसूस करते हैं। और इसी की वजह से अगर वो प्रेशर से अंदर जाती है
तो इसका मतलब ये है कि वो मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ और सुराख कर दिया उसने, सुराख को ज्यादा कर दिया उसने, जिसकी वजह से ये अंदर जाना शुरू हुआ, फिर वो उसको निकालने की कोशिश करती, मान लिया जाए अब अंदर चले ही गई है। कोई भी चीज जो शरीर को ठीक नहीं लगती वो शरीर के अंदर चले गई है, मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। मेम्ब्रेन जब डैमेज हो गया तो उसकी वजह से आम तौर पे सबसे पहले जो शरीर से नुकसान होता है, जैसे मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए दूसरे देश पर कोई किसी देश का हमला हो जाता है तो सबसे पहले उसके बॉर्डर की जो सिक्योरिटी होती है ना उसको, या उसके चारों ओर की जो सिक्योरिटी होती है ना उसको डैमेज किया जाता है। तो हमारी सबसे बड़ी सिक्योरिटी हमारे सेल है, सेलों में भी जैसे WBC है, इसके साथ WBC को खुराक कौन पहुंचाता है, WBC को एक्टिव कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होती है, RBC में होती है, खून के जो लाल कण होते हैं ना ये उसी में होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अटैक कहाँ हुआ, कि जैसे भी मिलिट्री में लड़ाई भी होती है ना तो दूसरी दुश्मन फौज उसकी सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश करती है, और सप्लाई लाइन काटने का मतलब है उसको डैमेज कर दो। So, सबसे पहले अगर मेम्ब्रेन खराब हो गया या कोई चीज जबरदस्ती या जहरीली किसी भी तरह की चीज जो खा ली है वो सेलों में दाखिल हो रही है, तो उस लिहाज से अंदर का निजाम इस तरह बदलेगा। और उसको वापसी में वो निकालने की कोशिश कर रहा है और उसका निकलेगा पसीने की वजह से, तेज तेज सांस लेंगे, ये सब क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो एक कंडीशन बन जाती है ना, मेम्ब्रेन खराब होने की जो कंडीशन एक पेशेंट की बन जाती है उसको हम बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। और हेमोलाइटिक एनीमिया जो है ये साबित करता है कि हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा टूट गया है और अब ऑक्सीजन शरीर की पूरी नहीं हो रही है, और इसी की वजह से हमें सांस फूल रहा है, इसी की वजह से हमें घबराहट हो रही है। इसको निकालने के लिए जो सेल है कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमें पसीना आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं त्रेली आ रही है, मैंने कोई जहरीली चीज खा ली या दवाई खा ली या फिट नहीं बैठी तो त्रेली आनी शुरू होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो सेल उसको निकालने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये गलत चीज मेरे में आ गई है। और उसके बाद अगर कोई चीज टेम्परेरी तौर पे हमारे शरीर में दाखिल हुई तो उसको हमने बाद में बंद कर दिया तो फिर वो सारा कुछ रिपेयर होना शुरू हो जाता है, नए सेल आने शुरू हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जो सेल हैं वो हमारी बड़ी बड़ी जो लंबी बोन है उनमें से बनते हैं और वो हड्डियां फिर उसको बनाना शुरू कर देती हैं। और आपने कई बार देखा होगा कोई जहरीला मादा या कोई बहुत ज्यादा नशा या कोई ऐसा कर लें तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, चलने फिरने में बंदा डोलने शुरू कर देता है, बिगना शुरू कर देता है, गिरता है। तो ये सब चीजें आमतौर पर इस बात की सूचक है कि अब बोन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है नए सेल बनाने के लिए, क्योंकि बाहर के जो सेल सर्कुलेशन में चल रहे हैं वो डेड हो रहे हैं। तो बारी चीज आ गई है सेलों में, उसकी वजह से वो सेल ज्यादा वहां मर रहे हैं, ज्यादा डेड हो रहे हैं जरूर से ज्यादा, और बोन्स को सेल बनाने के लिए और मेहनत करनी पड़ रही है। इसीलिए हमारी टांगे लड़खड़ाना शुरू कर देती, जहर वाली कोई चीज अंदर चली जाए या जो चीज हमें बर्दाश्त नहीं वो चली जाए तो हमारी टांगे जो है लड़खड़ाना शुरू कर देती, उसका मतलब भी यही है कि बोन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अब इस तरह के हालात में अगर हम बाहरी शरीर से देखें, उसका तो मेडिकल नाम तो मैंने आपको बोल दिया कि इसको हम बोलेंगे हेमोलाइटिक एनीमिया, कि भाई खून के लाल कण टूट रहे हैं, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पर वो जहर तो अंदर है ना, जहर की और क्या निशानियां होगी, बहुत बहुत सारा और नुकसान वो करेगा। दुश्मन अगर हमारे घर में आ गया या देश में आ गया और अंदर दाखिल हो गया तो बहुत से और भी नुकसान कर सकता है, और सी चीजों को भी नुकसान करेगा। तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन हमारे सामने से दिखाई देगा वो क्या होगा कि हमारी चमड़ी जो है पीली हो जाएगी,
क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हमारे शरीर में जो ग्लो है ना हेमोग्लोबिन की, इसीलिए है कि उसमें सफिशियंट ऑक्सीजन है। अगर सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं है, जब कोयले को आप फूंक नहीं मारोगे तो लाल नहीं होगा, अदरवाइज उसके ऊपर जो उसकी खाक है ना वो जमनी शुरू हो जाएगी और बेशक उसके अंदर आग रहे लेकिन बाहर से वो लगेगा, उसमें राख उसके ऊपर आनी शुरू होगी। फूंक मारोगे तो वो कोला फिर जलना शुरू हो जाएगा। और अगर फूंक मारने वाली बात ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन ही कम है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो उसी तरह राख बनना शुरू, बाहर से राख ही दिखाई देगा। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी चमड़ी जो है वो पीली हो जाती है, हमारी चमड़ी पीली हो जाती है, हमारे नाव नाखून ये पीले होने शुरू हो जाते हैं, आंख का रंग पीला होना शुरू हो जाता है, नेल आंखें ये सब पीली हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद पेशाब भी पीले रंग का होना शुरू हो जाता है। और ये जितनी बातें मैंने कही हैं, इनका सीधा सा बात है, एक ही लफ्ज में हम कहें तो फिर कहेंगे जंडिस पीलिया, के भाई उस बंदे को पीलिया हो गया। अगर तो एक आध बार की बात है तो ठीक हो गया, उसके बाद दवाई हमने वो छोड़ दी या वो जहरीली चीज खानी छोड़ दी तो उसके बाद वो ऐसा ऐसा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रोजाना में इस तरह की कोई चीज खा रहा है तो उस लिहाज में आस्ते आस्ते ये चीज बढ़नी शुरू हो जाएगी, लिवर काम करना बंद कर, जैसे शराबी लोगों को बोलते ना कि भाई तेरा तो लिवर खराब हो गया डैमेज, उसका मतलब यही है कि जो नशा जो दवाई चीज आप अंदर दे रहे हो वो इतनी ज्यादा नुकसानदेह हो गई है कि उसने बहुत सारा हेमोग्लोबिन आपका तोड़ दिया, सेल आपके तोड़ दिए, जिसकी वजह से ये पीलिया होना शुरू हो गया। और उसकी तस्वीर भी मैंने आपको बताई थी कि लिवर में जितना भी खून जाता है उसमें से जितना भी आयरन होता है वो आयरन वहां तोड़ देता है, उसका काम ये है कबाड़िए की तरह कि जो चीज उसके पास आई उसको पीस पीस कर देगा, तोड़ देगा, और उसमें से जो जरूरी चीज है वो खरीद लेगा, इसी से उसकी दुकानदारी चलती है। और जो उसके पास ज्यादा बच जाएगा वो ज्यादा भेज देगा खून में, अगर कोई कम है तो उसको कम भेजना पड़ेगा। और अब हम बात कर रहे हैं कि आयरन तो बहुत टूट गया, हीमोग्लोबिन तो बहुत टूट गया, इसका मतलब जितना ज्यादा आयरन टूटेगा उतना ज्यादा ही उसमें बिलीरुबिन बिलीवर्डन बनेगा, इनको हम बोलते हैं बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट। ये बाइल पिगमेंट बाइल साल्ट इतने ज्यादा बन जाएंगे और इतने ज्यादा हो जाएंगे लिवर में तो क्या करेगा, वो ज्यादा खून में भेज देगा, ज्यादा खून में भेजेगा तो हमारा रंग पीला, आंखें पीली, पेशाब पीला, होंठ पीले, नाखून पीले, ये सब होना शुरू हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली जब ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो फिर एनर्जी का लेवल भी हमारा लो हो जाएगा, और फिर थकावट, जल्दी थकावट, फटीग जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, थकावट होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा काम करो या सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, घबराहट होती है, थकावट हो जाती है, वैसे भी चलने में जो है वो सांस फूलना शुरू हो जाता है, जो पहले काम आप कर सकते हैं अब वो नहीं कर पाते हैं, ये सब चीजें बताती हैं कि अंदर मेम्ब्रेन की दीवार टूट गई। बाहर जा ऐसे कहें कि बाहर का प्रेशर किसी चीज से इस तरह बढ़ गया कि बाहरी चीजें जो नहीं चाहिए थी सेल को वो भी सेल के अंदर पहुंच गई, क्योंकि हर चीज जो अनवांटेड है, जो आपके शरीर को नहीं चाहिए, वो अगर सेल के अंदर जाए, इधर आलू ही ज्यादा खा लें, पोटैटो ज्यादा खा लें, आप परोठे ज्यादा खा लें, तो फिर आप लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर देते, क्यों लेने शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही। हर एक चीज चाहे वो जरूरी है, खुराक का अंग है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज अंदर चले जाती है तो वो इस तरह का हालात पैदा करती, गन्ने ज्यादा चूप ले, ये ज्यादा रसगुल्ले ज्यादा मीठे खा लिए तो फिर भी उनको ऐसे थकावट, घबराहट, वीकनेस आनी शुरू हो जाती, क्यों, क्योंकि शुगर ज्यादा अंदर चलेगी, शुगर ज्यादा अंदर चलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा बाहर चलेगी, हेमोग्लोबिन ज्यादा टूट गया, उसकी वजह से ये होगा। हालांकि शुगर बहुत जरूरी है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए या सेल बनाने के लिए, एनर्जी क्रिएट करने के लिए शुगर बहुत जरूरी है, लेकिन आपने ओवरलोडिंग कर दिया। जब आप ओवरलोडिंग कर देंगे तो आपने एक बात मैंने आपको इसको याद रखने के लिए बताऊं कि अगर आप किसी पार्टी पर चले जाओ ना तो जितना हम घर में खाते हैं उतना नहीं खाते, उसे कई कई गुना ज्यादा खा जाते, ये भी खा लो, वो भी खा लो, इतने रसगुल्ले खा लो, इतनी मिठाई ये खा लो सब, और दूसरे दिन पार्टी से रात आए थे, दूसरे दिन काम पर जाने को मन नहीं करता,
मजबूरी हो तो लोग जाते जरूर हैं, लेकिन ये बोलते यार नहीं मन नहीं करता, बड़ी थकावट सी है, पता नहीं पार्टी में गए थे ऐसे हो गया इसलिए हो गया। एक्सरसाइज तो फ्रेश करती है ना, अगर नाचे हैं कुछ ऐसा किए हैं तो फ्रेश होना चाहिए ना, लेकिन फ्रेश नहीं है। क्यों नहीं है कि जितनी कैलोरीज आपके बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा आपके शरीर में चली गई है और उसने आपकी ऑक्सीजन का जो काम था वो कम कर दिया है सेल में, जिसकी वजह से थकावट होती है, रुकावट होती है, तो ये फटीक वगैरह होनी जो आम तौर पे शुरू हो जाती है। अब ये काम मेम्ब्रेन का, हम सिर्फ मेम्ब्रेन के डैमेज की बात कर रहे हैं, जिसमें मेम्ब्रेन का डैमेज होना अगर तो टेम्परेरी है तो थोड़ी देर बाद सेट हो जाता है, थोड़े दिनों में सेट हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज लगातार शरीर में जा रही है तो उस लिहाज में आम तौर पे क्या होगा, पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, या ऐसा कहें कि तिली बढ़नी शुरू हो जाती है, कोई भी चीज अनवांटेड चली जाए शरीर के अंदर जिससे आपका हेमोग्लोबिन ज्यादा टूटना शुरू हो जाए, तो उस लिहाज से ऐसा होगा कि भाई सेल ज्यादा टूट गए हैं, जिसकी वजह से सेल की रिपेयर की, क्योंकि ऐसे मैं बोल दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि जितने भी सेल बोन बनाती है ना, लंबी लंबी बोन जितनी भी है, ये हमारे सेल बनाती है ना, तो ये खून में छोड़ देती, ये सब खून में छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचते हैं, सर्कुलेट करते करते करते करते तिली के पास पहुंचते, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन में पहुंचते हैं। स्प्लीन एक इनका इस तरह का डिपार्टमेंट है, एक ऑफिस है, जिस तरह रिक्रूट को भर्ती किया गया, उसको पूरी 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर उसको देखा गया कि अब इसको बॉर्डर पर लड़ाई के लिए भेजा जा सकता है कि नहीं जा सकता, और जो पूरे ट्रेंड होते हैं वो पास कर जाते हैं रिक्रूटिंग ट्रेनिंग और फिर उसको वापस भेज जाए। वो पास कौन करेगा, वो स्प्लीन है हमारी, खून के सेलों को स्क्रूटिनाइज करने के लिए या उनको ये देखने के लिए कि कितने सेल नॉर्मल हैं जिनको आगे खून में काम करने के लिए भेजा जा सकता है, और अगर वो देखें कि इसमें जो सेल हैं ये काम करने लायक नहीं है, सर्कुलेट करते करते बोन ने बनाए सेल खून में छोड़ दिए, चलते चलते सर्कुलेशन में जितने भी वो खून के जरिए स्प्लीन तिली के पास पहुंचते हैं वो उनको फिर फिल्टर करती, जो नॉर्मल सेल हैं उनको फिर सर्कुलेशन में भेज देती है, जो नॉर्मल सेल नहीं है उनको वहां रोक देती है, उनको जाकर डिस्ट्रैक्ट कर देती है, इसको इसको बोलते हैं फेगोसाइटिक फंक्शन, खा जाना, खत्म कर देना, उसको खत्म कर देती, नहीं भी तुम चलने लायक नहीं हो, तुम नहीं मिलिट्री में बॉर्डर में नहीं जा सकते, तुम ट्रेन नहीं हो पूरी तरह, उनको वो वहां खत्म कर देती है और फिर जो नए सेल आने शुरू हो जाते हैं फिर उनको स्क्रूटिनाइज करना शुरू कर देते। अब हम बात ये कर रहे हैं कि अगर किसी ने इस तरह की जहर, इस तरह की दवाई या इस तरह की कोई चीज रोजाना ही खा रहा है बंदा और उस रोजाना उसके शरीर में जा रही है, तो अल्टीमेट रोजाना ही तिली को वही काम करना पड़ रहा है, सेल तो बन रहे हैं, तिली उसको फिल्टर भी कर रही है, नए नए बढ़िया सेल जो है उनको वो भेज रही है सर्कुलेशन में, लेकिन बाकी स्टोरेज ज्यादा बच गया, बाकी अगर स्टोरेज ज्यादा बच जाएगा तो फिर तिली बढ़नी शुरू हो जाएगी बाई तरफ पसलियों के नीचे, आम तौर पे वो तिली हमें दिखाई नहीं देती, अगर दबा कर आप देखोगे ना पसलियों के नीचे तो वो तिली दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनकी ये प्रॉब्लम हो, चाहे बाहर से कोई चीज अंदर जा रही है तिली, चाहे अंदर से किसी अंग की खराबी से वो जहर बन रहा है, इसको इंडोटॉक्सिन बोलते हैं। दो तरह का जहर मैंने आपको बताया था, एक तो आपकी खुराक के साथ जा रहा है जो बाहर से जा रहा है उसको हम बोलते थे एग्रोटॉक्सिन, और एक ऐसा है किडनी खराब होगी, किडनी खराब होगी अब उसमें यूरिक एसिड फिल्टर नहीं हो रहा है, वो जहर के तौर पर शरीर में दाखिल हो रहा है। इसी तरह ही अलग अलग अंगों में अगर उनका निकास नहीं पूरा हो रहा गार्बेज का, वो खून में चला गया तो वो भी एक जहर का काम करता है, इसको हम बोलते हैं इंडोटॉक्सिन। तो सेल से बाहर से भी कोई जहर जा सकता है, अंदर से भी कोई सेल जहर जा सकता है, लेकिन काम उनका वही होगा कि वो सेलों को ब्रेक करेंगे, किडनी जो स्प्लीन है उसका काम बढ़ जाएगा,
उसका काम बढ़ जाएगा, पर उसकी अपनी काम करने की समर्थता है, एक लिमिट है ना कि कितना वो खून साफ कर सकती है। और उससे ज्यादा सेल टूटना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा जहर खा लिया या बार बार खा लिया, अल्टीमेट उतने बोन सेल बना नहीं रही जितने सेल आगे चाहिए, और उनमें से भी डैमेज सेल है, उनमें भी पूरे ट्रेंड फौजी नहीं है, तो वो क्या करेगी, स्क्रीन के पास स्टोरेज इतना नहीं रहेगा और वो बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा, तो वो तिली जो हमारी पसलियों के नीचे हमें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, इसको बोलते हैं हुडकिंस डिजीज। और फेगोसाइटिक फंक्शन जो उसका था कि कितना खा लेगी बेचारी, कितना हजम कर लेगी, कितना बर्न आउट कर देगी। पुलिस वाले पकड़ते हैं ना, ड्रग वगैरह पकड़ते हैं तो फिर कई बार उसको बर्न करते हैं, बंद करते हैं, माल खाने का सामान निकालकर उसको बंद करते हैं कि भैया कहीं और मार्केट में ना जाए या कहीं ऐसा ना हो। सो उसलिए ये ट्री का काम है, तो उसके पास जितना गार्बेज बच गया, एक्स्ट्रा गार्बेज हो गया, अब उसके पास स्टोरेज नहीं है, तो फिर वो उसको कितना बर्न करेगी, बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर तिली बढ़ जाती, वो गार्बेज बढ़ गया तो थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी का सेल का मेम्ब्रेन किसी कोई जहरीली मादा अंदर जाने की वजह से, या इवन खुराक का ही ऐसा हो गया, जो खुराक नहीं चाहिए वो आप खा रहे हैं उसकी वजह से हो गया, या अंदर कोई किसी को किसी अंग का कैंसर हो गया या किसी अंग की खराबी होगी, अंदर से ही टॉक्सिन बन रहा है और वो सेलों में जा रहा है, तो उसकी वजह से अगर सेल ज्यादा टूट रहे हैं, एक तो मैंने बता दिया कि पीलिया हो जाएगा, रंग पीला हो जाएगा, पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, नौ पीले होने शुरू हो जाएंगे, ये आंखें पीली होनी शुरू हो जाएंगी, ये निशानी होगी। दूसरी मैंने आपको ये बात बताई कि अगर इस तरह की कंडीशन आए, ये हमें बताएगी कि नुक्स कहाँ है सेल मेम्ब्रेन में, कि पीली बढ़ जाएगी, पीली बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि कोई पुरानी बीमारी का मरीज हो ना, जस्ट फॉर कैंसर आप ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं, किसी का कैंसर हो ना, तो जिस जगह का कैंसर हो सबसे पहले वहां के एरिया के नजदीक जितने भी लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड वो हैं जो गार्बेज इकट्ठा करते हैं, सेलों से गार्बेज इकट्ठा करते करते करते करते खून को साफ करते हैं, कि खून तो नॉर्मल स्पीड से चलता रहे, वापसी जाने वाला आने वाला खून फ्रेश है, वो सीधे जा रहा है, वो जीडी रोड है उसमें कोई लाइन, कोई ट्रैफिक लाइन लाइट नहीं है रुकने वाली, वो सीधा सेलों में जा रहा है, सेलों से जो वापसी आता है उसमें जगह जगह ब्रेकेज है, जैसे पुलिस कटा रहता है, उसमें जितना भी गार्बेज या जितना भी इस तरह की चीजें होती हैं जो खराब सेलों के या खराब अंग से ज्यादा गार्बेज बन के निकल रहा है, उनको जगह जगह रोकती है ट्रैफिक, इनको चेक करेंगे भाई इसके कागज पत्र पूरे हैं कि नहीं है, वो पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड भी अगर बहुत ज्यादा खराबी आनी शुरू हो जाए तो कितनों को कंट्रोल करेंगे, अगर एक मोटरसाइकिल आ गया तो उसको रोक लिया, अगर ज्यादा मोटरसाइकिल आ जाएंगे तो फिर कितने के सिपाही वहां होंगे, कितने को उसको कंट्रोल करेंगे, हर लिम्फ नोड की अपनी अपनी कैपेसिटी है, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो लिम्फ नोड फूलने शुरू हो जाएंगे, अगर लिम्फ नोड का सीधा चैनल है वो कहां जाएगा, तिली में, अब तिली भी बेचारी ऐसी है कि बेकाबू हो गई है, तो इस लिहाज से हम लोग चेक करते हैं कि कहां कहां लिम्फ नोड बढ़ गए हैं, ये साबित करता है कि किधर से बीमारी आ रही है, किधर से ये लिम्फ नोड बढ़ रहे हैं, और अल्टीमेट स्प्लीन तिली तक पहुंच गए हैं, अब हमारी तिली भी बढ़ गई, वो जो तिली का बढ़ जाना है वो इस बात का सूचक है कि आपके सेल का मेम्ब्रेन नॉर्मल नहीं रहा। उसके बाद अब मान लिया जाए जो चीज हमें नहीं चाहिए वो अगर शरीर में दाखिल हो गई, सेलों में दाखिल होगी, मैं इसकी और एग्जांपल आपको दूं, दूध है ना, दूध में बिगड़े चाटा दूध का कांजी की कुख है, कांजी की एक बूंद अगर डाल दो दूध में तो वो पूरे का पूरा दूध खराब कर देते, क्या बन जाता, पनीर बन जाता, जैसे हम पनीर बनाते हैं ऐसे घर में उसमें नींबू डाल देते हैं या कुछ और चीजें डाल देते हैं जिससे दूध फूट जाता है, पानी अलग हो जाता है और उसमें जो थिक मटेरियल है वो अलग हो जाता है। और अगर किसी सेल में इस तरह की कोई चीज चले गई तो वो क्या करेगी, अंदर का जो मटीरियल था उस सारे मटीरियल को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, दूध मान लें जी, दूध का चाटा है ये जो पूरा सेल है, ये एक चाटी है दूध की, पॉट है, और उसमें जितना अंदर है जो भी कुछ है उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था, उसको अब दूध मान लें। और अब इसमें कोई इस तरह की चीज आ गई
जिसको हम कांजी की तरह बहे, जिसको हम खट्टे की तरह नींबू की तरह बोले, तो वो क्या कहेगी? वो अंदर के दूध को फुटा देगी। अंदर का दूध फुट गया, अब क्या होगा? सेल के अंदर इस तरह की कंडीशन जब बन जाएगी तो सभी चीजें, जितनी भी उसके अंदर और काम करने वाले डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो सारे के सारे अलग अलग हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेंगी कि यहां तो आग फैल गई है, अब सब सेपरेट हो जाए। तो वही काम जब इस तरह होना शुरू हो जाता है तो जितने भी सीरम हैं, जितने भी सिक्रीशन इस शरीर से बन बन कर शरीर को हजम करने के लिए निकलते हैं, उनको एंजाइम्स बोलते हैं। जैसे पेट में HCL निकलता है, या पेप्सिन निकलती है, या बाइल निकलता है लिवर से, या पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलती है, एंट्रोपेनाइज अंतड़ियों से निकलती है, इनको हम एंजाइम्स, मुंह में निकलता है टाइलन। तो जितने भी ये एंजाइम निकलते हैं ना, ये पूरे के पूरे इस तरह हो जाते हैं जैसे दूध फूट गया हो। दूध फूट गया है क्योंकि सेलों के अंदर इस तरह की कोई चीज चली गई कि वो अंदर का निजाम, अंदर का जो दूध नॉर्मल नहीं रहा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये फूटना शुरू हो जाएगा तो फिर अलग अलग थक्का बन गया ना, अलग अलग वो जमना शुरू हो गया ना, जिसको हम पनीर बोलते हैं, वो नॉर्मल तो नहीं रहा, नॉर्मल दूध तो नहीं रहा। ठीक है, हम उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टेंडेंसी अगर मान लिया जाए लिवर से बाइल निकल रहा है, और बाइल जमा हो रहा कहां? गाल ब्लैडर में जमा हो रहा है, और उसमें आकर हुआ क्या कि वो तो फूट गया, वो तो पनीर बन गया है, तो उसका पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा, वो जो थक्का जम गया है वो नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठा बैठा वो सख्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्लैडर की एक कंसिस्टेंसी है कि हमेशा मूव करता रहता है, हमेशा जैसे कोई चीज सुकड़ती है फैलती है, सुकड़ती है फैलती है, हर एक सेल ही ऐसे कर रहा है, तो गाल ब्लैडर भी ऐसे कर रहा है। तो वो जो सिंगनी चीज है उससे पूरी तरह स्क्वीज होकर निचोड़ कर पानी तो उसका ऊपर आ रहा है, सिंगना मादा जम रहा है, तो क्या बनेगा? गाल ब्लैडर का स्टोन बन जाएगा। और गाल ब्लैडर का स्टोन ही क्यों बनेगा? किडनी में भी तो वो जा रहा है, वही खून जा रहा है। इसी तरह किडनी के अंदर भी क्या होगा कि स्टोन बनना शुरू हो जाएगा। अकेला किडनी में ही नहीं, बॉडी के और बहुत सी जगह है, जैसे ग्लैंड जितने भी हैं, थायराइड ग्लैंड गले में, मुंह में बहुत सारे सबलिंगुअल ग्लैंड हैं या वेस्टिबुलर ग्लैंड, कितनी तरह के ग्लैंड मुंह में, जितनी जगह जगह अलग अलग ग्लैंड हैं, उनमें भी यही कंडीशन बन जाएगी कि भाई वो दूध तो फूट गया, और उसी में भी पथरी बनने की टेंडेंसी बन जाएगी। अब यही बात, यही खून चमड़ी में भी तो जा रहा है, चमड़ी में भी जा रहा है, तो वो कड़ी आज जितने बोलते ना स्किन टैग हो गए, मौके हो गए जी, बड़े बड़े मौके होने शुरू हो गए, या कहीं ना कहीं ट्यूमर गिल्टियां बननी शुरू हो गई हैं शरीर में, मेरे यहां पर भी गिल्टी, मेरे पेट में भी गिल्टी, या बाहों में है गिल्टी, ये जितनी भी गिल्टियां होनी शुरू हो जाती है ना, उसका मतलब ये है कि आपका दूध फूट गया है, सेल मेम्ब्रेन खराब हो गया, अंदर का जो साइटोप्लाज्म था उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहा, और इसकी वजह से यही अब जगह जगह सेल में, एक दूसरे से सेल में जा रहा है, सेल टू सेल बॉडी में जा रहा है, और बॉडी में जाते अलग अलग जगहों में जम रहा है, वहां पर ये स्टोन फॉर्म करेगा। सो ये बातें आम तौर पर मान लिया जाए पथरी का आता है कोई भी केस किसी के डॉक्टर के पास, तो असल वो ये होता क्या, अच्छा भाई गाल ब्लैडर निकलवा दो। अरे भाई गाल ब्लैडर निकलवाना हाल तो नहीं है ना, असल हालत तो ये है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये बात चली कहां से है। गाल ब्लैडर निकाल दोगे तो आंखें बंद कर लोगे तो बिल्ली कहे कि कबूतर नहीं आ रहा, वो तो आ रहा है, वो दूसरे किसी अंगों में जाएगा और कहीं जगह जगह जगह ये संगना जमना शुरू हो जाएगा। तो पर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मानते ही नहीं है, नहीं नहीं ये जो तुम्हारी बवासीर है ना, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, गाल ब्लैडर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन भाई अंग तो वही हैं, वही सेल हैं, वही सेलों का अंदर का निजाम मेम्ब्रेन खत्म होने की वजह से, खराब होने की वजह से अंदर का निजाम तो हर एक जगह का बदला है, ऐसे तो नहीं है कि एक जगह का बदल गया दूसरी जगह का नहीं बदला है, हर एक जगह का होता है। हाँ ये होता है कि एक जगह में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया, दूसरी जगह में मैंने एक एग्जाम्पल दी थी यहाँ का, अगर कहीं रिश्तेदारी में कोई डेथ हो जाती है ना,
जितनी जितनी हमारी नजदीकी होती है उसमें उतना उतना हमें दुख होता है, उतनी उतनी पीड़ होती है। जितना जितना दूर का अंग होता है उतना उतना थोड़ा दुख कम होता है, दुख तो होता है उतना कम होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लिया जाए कोई प्रॉब्लम आ गई किस तरह की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी में इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलेशन में इफेक्ट होगा, लेकिन वो दूर के रिश्तेदार हैं उनमें थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा और ज्यादा इफेक्ट हमें उस अंग में ही दिखाई देता है। इसीलिए डॉक्टर लोग बोलते हो तेरे तो गाल ब्लैडर में नुकसान है, गाल ब्लैडर निकाल दो। जहां पर दुख है उसी को निकालने की कोशिश की जाती है, ये जो सही ट्रेंड नहीं है। क्योंकि हम लोग ने एक डेफिनेशन दी थी कि असल में जो कुदरत ने शरीर बनाया है उससे सियाने उससे समझदार तो हम नहीं है ना, पर एक चीज जो उसने लगाई है ना वो किसी ना किसी जरूरत के हिसाब से लगाई है। और हम कहें कि नहीं भाई ये चीज तो इसकी तो जरूरत नहीं। अब मैं अब देखा कि वो ट्रेंड चलता है कि किसी को अपेंडिक्स जो होता है ना, कई बार बच्चे पैदा होते ही उसका अपेंडिक्स निकाल देते हैं कि ना भाई आगे चलकर इसको कहीं अपेंडिसाइटिस ना हो जाए, इसी प्रॉब्लम ना हो जाए। कई बार लोग पहले मर जाते थे बेचारे अपेंडिक्स की वजह से, अंदर फंस जाता था तो बोलते इसको निकाल ही दो। लेकिन अभी हमें पता चला क्योंकि डे टू डे जो रिसर्च होती है पता चलता है कि जितने भी अंग कुदरत ने शरीर में लगाए हैं ना उनका कोई ना कोई फंक्शन है। उसको निकाल देने का मतलब ये हम इग्नोरेंट हैं, हम नहीं जानते उसके फंक्शन के बारे में। और हम जानते हैं और फिर भी निकालते हैं तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि इसका कोई पर्पज है जो उसने लगाया है वो काम कौन करेगा? अगर नहीं करेगा तो वो आगे ट्रांसमिट होगा। एक आदमी क्लर्क यहां काम करता था, उसका कोई काम था, अब आपने उसको हटा दिया, अब वो फाइलें कौन देखेगा? और किसी और डिपार्टमेंट जाएंगी उसको खराबी करेंगे, उसका तो अपना काम है। तो इसी तरह गाल ब्लैडर को निकाल देना हल नहीं है, या किडनी वाली बात कहां भी हो गई उसको वहां से हटा देना अंग को, ये उसका हल नहीं है। हल ये है सोचना है कि अगर मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से अगर साइटोप्लाज्म में उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो उसको ठीक करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या ये इंटरनल इंडोटॉक्सिन से हुआ है या एक्सटर्नल एक्सोटॉक्सिन से हुआ है। तो उसी के मुताबिक डॉक्टरों को परहेज बताना होगा, उसके मुताबिक डॉक्टरों को इलाज करना होगा ताकि वो चीज परमानेंट हो जाए, परमानेंट ठीक हो जाए, किसी अंग को काट कर बाहर फेंकना ना पड़े। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में सब चीजें ऐसा कर रहे हैं और सभी अंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका आप तो कोई पर्पज नहीं है, अब इसको निकाल दी। अब जब हम इसको ऐसे करते हैं, जानते हैं कि ये हो गया है, इसकी वजह से और क्या निशानियां आएंगी? पीडीए की बात मैंने बता दी, सांस ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो जाएगी और दिल ज्यादा धड़कना शुरू करेगा। क्यों ब्रेथलेस में ऐसा होना शुरू हो जाता है? मतलब अब ऑक्सीजन पूरी जा नहीं रही। अब दिल का क्या काम है? दिल का काम है सेलों को खुराक को अलग अलग जगह पहुंचाना। अब सेलों के लिए वो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उसके पास रेड ब्लड सेल हैं, वो तो डब्बे हैं, खाली खाली डब्बे हैं ट्रेन के, उसमें माल भर के जाता है, ऑक्सीजन भर के जाती। अब और सेल ही टूट गए हैं, सेल ही कम है, ट्रेन के डब्बे ही कम है जिसमें ऑक्सीजन जा सकती है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अब दिल का क्या काम है कि ना भाई तेरा काम है सप्लाई करना। अब मिस्त्री दीवार पे काम कर रहा है और जो वो सीमेंट पहुंचाने वाला बंदा या ईंट पहुंचाने वाला बंदा, वो सीमेंट ईंट ही नहीं पहुंचाएगा तो मिस्त्री तेरा क्या करेगा? नहीं तो उसको जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चक्कर लगाने पड़ेगी कि फटाफट चलो भाई, मिस्त्री खाली नहीं रहना चाहिए। तो वही काम ऑक्सीजन पूरा करने के लिए दिल को बार बार धड़कना पड़ता है, बार बार 72 से 80 बार हम लोग नॉर्मल समझते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही किसी भी हालात में, अब ये हालात तो मैंने आपको मेम्ब्रेन का बता दिया ना, अगर किसी भी हालात में ये अगर पूरा नहीं हो रहा तो उस हालात में दिल को बार बार धड़कना पड़ेगा, बार बार इसको सर्कल में लाना पड़ेगा। और इसी हिसाब से जो फेफड़ों का काम है कि नहीं बाहर से ऑक्सीजन और ज्यादा ले लो बाहर से, ओके बाहर की ऑक्सीजन में नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, और उसमें से ऑक्सीजन हम उसको फिल्टर करके सेलों में देनी है। लेकिन अब पूरी नहीं हो रही तो फिर हम सांस भी तेज तेज बार बार लेंगे और ये कंडीशन जो है सामने हमें दिखाई देगी, जो ये साबित करेगी पेशेंट आया सामने देखें और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं इसका मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है।
और अगर ऐसा होना शुरू हो जाता है तो उसमें मसल की वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, हरेक सिस्टम ही वीक हो जाए, भूख नहीं लगती, इंडाइजेशन होना शुरू हो जाता है क्योंकि हजम नहीं हो रहा। और और एक और बात, अगर जिन लोगों को ये चीज लगातार लंबे समय तक रहती है, अब बुजुर्गों को देखते हो ना कि एड़ी फट गई है, उसकी बिराइयां फटने शुरू होगी जिसको बोलते हैं, उंगलियों की जो टिप्स हैं, पोटे हैं, वो क्रैक होने शुरू हो गए। ये क्यों होता है? ऐसे होता है कि उनके छल्लों में जो चीज जा रही है वो पूरी तरह वहां एडजस्ट नहीं हो रही और वो खुराक सर्कुलेशन में भी पूरी नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से जैसे नहर की टेल होती है ना, जहां पर बहुत ब्रीक हो जाती, छोटी हो जाती नहर, वहां पर पानी नहीं जाता। अगर पीछे से प्रेशर कम हो या भाखड़ा से पानी कम छोड़ा जाए तो वो नहीं जाएगी। इसी तरह ही बुजुर्गों में ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनकी एड़ियां फटनी शुरू हो जाती, रियाइयां फटनी शुरू हो जाती, उंगलियों के टिप्स जो फटने शुरू हो जाते। पर ये बात हम बुजुर्ग की कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन किसी यंग एज में होनी शुरू हो जाए तो फिर हमें इमीडिएट इंडिकेट करती है कि नहीं, इसके शरीर में कोई ना कोई इस तरह का जहरीला मादा जरूर चले गया है और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे याद है एक एग्जांपल मेरे फादर साहब दिया करते थे हकीम अजमल खां के बारे में। वो बोलते हैं कि हकीम अजमल खां को उस वक्त तो वैद होते थे, इस तरह की क्लिनिक बनाकर हमारी तरफ तो नहीं बैठते कि दो तीन तीन कमरे हम रिजर्व करके बैठे हैं कि मेडिसिन अलग है, कंसल्टेशन अलग है, फाइलें अलग है, इस तरह का तो काम नहीं होता था उस वक्त। तो उस वक्त वो दरख्तों के नीचे बैठे हैं, वैद जी बंदे लगे हुए हैं, कूट पाट के वो सबको दे रहे हैं। तो इस तरह की बात थी, कुछ अंग्रेजों ने सोचा कि हमने सुना है अजमल खां हकीम का बहुत नाम सुना है, देखते हैं चेक करते हैं उसको। और वो उसके पास चेक करने के चले गए, उसने बोला कि भैया हम लोग आए हैं और देखिए तो नब्ज देखकर हमारी बताइए क्या बीमारी है। और उसने देखा और उसने बोला अच्छा इनको भाई फलानी फलानी दवाई दे दो। उसने बोला यार नाम तो बहुत सुना था, इसने तो एक मिनट में हमें कहा दी वो दवाई दे दो, इसका क्या हुआ, कैसे इसको कैसे पता चल गया बीमारी क्या है कैसे है? वो गए और थोड़ी दूर जाकर बोलते हैं यार ये ऐसे ही नाम सुना था, नाम ही चलता है इसका और कोई काम तो है नहीं इसका। और उसके किसी शागिर्द ने अजमल खां के शागिर्द ने सुन लिया तो उसने वैद्य जी को बताया, अजमल खां ने कहा उनको बुलाकर लाओ। बुलाया, वो बोलता है तुम्हारे शरीर में आज से 10 साल पहले का कोई जहर है और उस जहर की वजह से तुम्हारा ये मेम्ब्रेन खराब हो गया है, जिसकी वजह से मैंने ये दवाई आपको दी है। बोला भाई कुछ हुआ था? तो उसने बताया मुझे सांप लड़ा था, सांप ने काटा था। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल के तौर पे जब भी कोई ऐसा कुछ होता है तो ये निशानियां आम तौर पे आनी शुरू हो जाती, डिजीनेस होगी, बंदा इरिटेट हो जाता है। जब सांस फूलता है ना कि नहीं काम चला जाता है तो काम करना पड़े तो आदमी इरिटेट हो जाता है। ये साधारण सी बात है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पल्पिटेशन हो गया, डिजीनेस होगी, इरिटेशन होगी, मांसपेशियां सूखनी शुरू होगी, बियाइयां फटनी शुरू होगी अगर लंबे समय तक है। और जवान बंदा बूढ़ा है तो हम समझते हैं कि कंडीशन है, एज ओल्ड एज की सर्कुलेशन स्लो हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अगर यंग एज में ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे की कहानी सेल मेम्ब्रेन की है। अब भाई बूढ़ा हो गया और सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो उसमें क्या होगा? उसमें दो बीमारियों का नाम हम देते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्जाइमर्स, दूसरे को हम बोलते हैं पार्किंसन। अल्जाइमर को हम ये बोलते हैं कि ब्रेन को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्रेन पूरी तरह काम नहीं कर रहा और याददाश्त कमजोर हो गई। अल्जाइमर के पेशेंट मैंने इस तरह के देखे हैं कि उस पेशेंट को उसके अटेंडेंट, उसकी लड़का या लड़की कोई लेकर आए हैं साथ में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो साथ में मुझे लेकर आया है मेरा बेटा है, बेटी है या कौन है, उनको ये भी याद नहीं, उनको नाम भी याद नहीं रहता। अल्जाइमर की कंडीशन इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। एक बार मैं ये जो टीवी स्टेशन है जिसके प्रोग्राम मेरे चलते थे जस्ट पंजाबी में, मैं उनका ये अल्जाइमर पर लेक्चर दे रहा था और बुजुर्गों के हालात की मैं बात कर रहा था और वो जो आदमी वो रिकॉर्डिंग करने के लिए आया था ना, वो मशीन के पीछे बैठा हुआ रो रहा था कि हम लोगों को भी बुजुर्ग होना है, अगर ये हालात हमारे साथ बने जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो बहुत मुश्किल वाली बात है ना। और वो रो रहा था। अल्जाइमर किस तरह की कंडीशन है कि हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो हैं वो मेरे सामने बैठे हैं, अब हम उसको पहचानते नहीं है। मतलब
जो हमारा फ्रंटल लोब है ना ब्रेन का, ये अलग अलग ब्रेन एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है, मैंने इसके कई बार बातें आपसे की, और इस ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग काम करते हैं। हमारा फ्रंट लोब जो है ना ये याददाश्त से कनेक्टेड है, हमारी कैलकुलेशन से कनेक्टेड है, हम मैथ में होशियार होते हैं कि कमजोर होते हैं, ये हमारे फ्रंट लोब पे है, हमें याद रखना है। बहुत बहुत पुरानी पुरानी बातें भी हमें याद रह जाती है, जिसका मतलब हमारा फ्रंट लोब काम कर रहा है। अगर ये भी याद ना रहे कि ये सामने कौन बैठा है, तो फिर समझो कि फ्रंट लोब जो है डैमेज हो गया है। सो अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हालांकि ये बात है कि कुदरत ने ब्रेन को ठीक रखने के लिए, जैसे किसी देश से लड़ाई हो जाए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो होता है देश का या फौजों का कमांडर होता है, उसको बचाकर रखते कि इसकी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम हार गए, जंग को हार गए, ये एक टेंडेंसी होती है। और उसी लिहाज से कुदरत ने ये कहा कि ब्रेन पूरे शरीर को चला रहा है, इसको दो गुना खून दीजिए, इसको दो गुना खुराक जाए, दो गुना नहीं, इसको ऑक्सीजन जाए, ज्यादा तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, हम आदमी है, एकदम ही दम आया तो हम आदमी नहीं तो डेड बॉडी है, और दम का मतलब है ऑक्सीजन। सो ब्रेन को जो आप देखते हैं ना गले में, ये दो नाड़ियां ऊपर जाती है, हाथ लगाकर देखो तो दोनों साइड में टक टक हो रही है, इसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरीज। तो ये जो कैरोटिड आर्टरीज है, खून की नाली बाई तरफ से दिल से निकलती है, उसका नाम है एओर्टा। एओर्टा फिर यहाँ पर आके एक गोलाई में पेट को नीचे जानी शुरू हो जाती है सभी अंगों को सप्लाई करने के लिए, लेकिन जैसे ही इसकी गोलाई है उसमें से दो नालियां सीधी सिर को जाती है, प्रेशर हुआ सीधी दो नालियां सिर को जाती है, ताकि दो गुना खून सिर को पहले पहुंच जाए, उसको ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा खुराक मिले। बावजूद इसके भी अगर नहीं जा रही, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो फिर ये याददाश्त जानी शुरू हो जाती है, और बुजुर्गों में आमतौर पे होता है, पर हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की डैमेज की। अगर उम्र से पहले ऐसा हो जाए तो लोग आमतौर पे 50 55 60 में बोलना शुरू कर देते हैं, और मुझे भूल गया यार, या भूलने की आदत हो गई है, बहुत सी चीजें मैं भूल जाता हूँ, साधारण सी बात है, आम ही लोग बात करते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि उसके ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, खुराक की सप्लाई पूरी नहीं हो रही, ये इस चीज का साइन है। हाँ, इसकी दो कंडीशन है, एक को हम बोलते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस, कि घरवाली ने कहा कि बाजार से आते समय ये चीज लेते आना, अब मेरे पास तो बहुत से काम है, मैं अपने ऑफिस का काम करूं, ये करूं वो करूं, करते करते ये भूल गया वो जो घरवाली ने कहा था सामान लाने के लिए, मैं नहीं ला सका। तो इसका मतलब है एब्सेंट माइंडेडनेस, ये वो बात नहीं है एब्सेंट माइंडेडनेस के, मेरा जो कोटा है इंटेलिजेंसी का उसको रखने का, ठीक है क्या क्या मैंने करना है वो छोड़ा है, छोटा है, नहीं याद रहा। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, उस चीज का नाम है अल्जाइमर। और दूसरी बात मैंने इसी हालात में सेल मेम्ब्रेन की डैमेज के बारे में ही कही थी कि अगर इस तरह का होना शुरू हो जाता है और उम्र बुजुर्ग हो तो उसको हम बोलते हैं पार्किंसन। और पार्किंसन को दूसरे लफ्जों में हमें बयान करना हो तो हम कहेंगे इनकोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन एंड बॉडी। माइंड का अगर बड़े अफसर ने हुक्म दे दिया, और आपने देखा होगा कि नीचे वाले अफसर काम ही नहीं करते, उस तरह बेपरवाही करते हैं, नहीं परवाह करते उसकी, तो किया है हुक्म तो कोई बात नहीं। अब हाईकोर्ट की बहुत सी बातें होती हैं, वो सरकार को बोल देते हैं, सरकार काम ही नहीं करती, तो मतलब इस तरह का भी काम हो जाता है। और इस चीज को हम बोलते हैं पार्किंसन। अगर शरीर में इस तरह का हालात बन जाए कि ब्रेन चाहता है मैं कुछ करूं, हाथ को ऑर्डर देता है कि ये पकड़ो, हाथ पकड़ ही नहीं रहा। कुछ लोगों के हाथ आपने कांपते हुए देखे होंगे, यंग एज में भी लोगों के हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कोरिया। उसका कंडीशन भी नर्वस सिस्टम से संबंधित है। और हम ये बोलते हैं कि ओल्ड एज के हालात में अगर ऐसा हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है ना, आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को, अच्छा बापू चाचा ये लो चाय का कप ले लो, आपने उसके टेबल पे रख दिया कि चाय पी लो, लेकिन अब उसका दिमाग तो ये करता है कि भी मैं चाय के कप को पकड़ूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और वो चाय के कप को जहां से पकड़ना वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटका लगता है और कप गिर जाता है। ये इसको हम बोलते हैं पार्किंसन। इनकोऑर्डिनेशन है ब्रेन का और अपने शरीर का काम करने का। ब्रेन ने तो ऑर्डर किया है कि कप पकड़ो और पियो, लेकिन हाथ
उसको उसके मुताबिक नहीं कर रहा जैसे उसने कहा था। तो ये सब बातें जो है आमतौर पर ओल्ड एज में होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर यंग एज में हो जाए तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है कि भाई ऐसा हो गया। अब इतनी सारी बातें मैंने आप सब लोगों को बोल दी कि भाई फिर हल क्या है इसका, क्या करें। बड़ी बात ये है कि सबसे पहले हम ये शनाख्त करें इंडोटॉक्सिन है कि एक्सोटॉक्सिन। हमारी खुराक पहले डॉक्टर बोल रहे हैं परहेज करो जी। अच्छा डॉक्टर जी खाना क्या है मुझे, ये आम लोग पूछते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सोटॉक्सिन है खुराक की वजह से जा रहा है या किसी दवाई की वजह से जा रहा है, ये डॉक्टर का काम है आपको बताना कि कौन कौन सी चीज आपके शरीर को फिट नहीं बैठती, उसको जाने के लिए आपको क्या करना है। तो ये इसको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन। तो सबसे पहले आपको शनाख्त करनी है उसके खान पान रहन सहन। एक कल पेशेंट मेरे पास आया और वो उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम बता रही थी, तो मैंने कहा भी काम कब करते, कहता है काम तो मैं रात को करता हूँ। अरे भाई रात के समय में कुदरत भी अपना चलन बदल देती है। रात के मिड नाइट, लोग बोलते हैं कि रात को मिड नाइट दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। कारण क्या है कि सारा दिन वनस्पति हमें ऑक्सीजन देती है और हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वनस्पति का जीवन कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन मिड नाइट जैसे कि घर की सवानियां होती है ना, सारा काम किया करने के बाद भांडे बर्तन जितने भी है उनको गर्म पानी से धोकर रख देती है कि सुबह इनको फिर हम इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जा, हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, नींद पूरी तरह आ गई, हाथ ढीले हो गए, आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं, नींद में होते हैं, उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर में एंटर करती है। जैसे कि ऑक्सीजन भारी है ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन जाती है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होती है वो ऊपर निकलती है। लेकिन उसके पैर क्या होता है कि आप रिलैक्स हो गए, रिलैक्स होने की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे, और दूसरी बात उस वक्त एनवायरमेंट में भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, और जा भी जाती है तो आपका जो फेफड़े है पूरी तरह फैल जाते हैं, पूरी कैपेसिटी में फैल जाते हैं, और फिर उसके बाद जब आप उठते हो तो उसमें पूरी ऑक्सीजन भर जाती है। कोई भी आदमी अगर 10 से लेकर 2 बजे तक पूरी नींद ले ले, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अमेरिका में हो, पूरी नींद मिडनाइट की 10 से लेकर 2 ले जाए, उसको 8 घंटे या 10 घंटे बेड पर लेटने की जरूरत नहीं है। उसकी ऑक्सीजन जितनी उसको चाहिए वो कैपेसिटी फिल अप हो जाएगी, और उसमें जो रेजिडुअल पोर्शन है वो टाइडल एयर, टाइडल वॉल्यूम, ये सब रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब हम गिनती करते रहते हैं लंग्स की, मतलब उनका कैपेसिटी जो है वो पूरी हो जाएगी कि रेगुलर ब्रीदिंग में एक्स्ट्रा लोड उसका बच जाएगा ऑक्सीजन का, वो फ्रेश फील करेगा। और अगर आप इस समय में जाग रहे हो ना

तस्वीर साहब का गीत सुन रहे हैं। क्या बात है, सिद्दीक दी बारे गीत कौर जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।

0: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ
1: ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜੀ
0: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਓ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
2: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ
0: ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ
2: ਓਕੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ
0: ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
2: ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਸਭ ਰੰਗ ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਮੁਝੇ ਦੇਖਣੇ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸ੍ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਜੈਸੇ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਮ ਤੀਨ ਭਾਸ਼ਾਓਂ ਮੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇ ਯੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਔਰ ਆਜ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋ ਮੇ ਮੈਨੇ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀ ਥੀ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਕੀ ਥੀ ਸੈੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਜੋ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਕੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਮੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕੋ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਮੈਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੇ ਉਸਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਆ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਹਮ ਆਪਣੇ ਲੌਕ ਰੂਮ ਮੇ ਜਵੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੋ ਸੰਭਾਲਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹਮਾਰਾ ਰੰਗ ਹਮਾਰੀ ਆਂਖੋਂ ਕਾ ਰੰਗ ਯੇ ਸਭ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਇਸੀ ਲਈ ਅਗਰ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮਨੇ ਯੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਯਾ ਗਰੋਥ ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸੈੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੂਮ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਭੀ ਨਾ ਕਭੀ ਅਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਤੀ ਤੋ ਘਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੋ ਵੀ ਹਮ ਕਬ ਕਭੀ ਅਲਗ ਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਕਰੂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਕਾਮ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਕਿਸੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇਤੇ ਠੀਕ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲ ਮੇ ਘੂਮ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜ ਗਈ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਸਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਕੀ ਥੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਇਸਕਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਮੈਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਥਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਾ ਔਰ ਯੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੋ ਪੂਰੇ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸੀ ਸੇ ਹੀ ਗਰੋਥ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸੀ ਸੇ ਹੀ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਸੀ ਸੇ ਹੀ ਜੋ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ ਅਸਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬਣਾਕਰ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਮਨੇ ਚਲਾ ਦਿਆ ਰੇਲੇ ਪਰ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਰੱਖ ਦਿਆ ਔਰ ਹਮਨੇ ਗਾੜੀ ਬਣਾ ਦੀ ਤੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਕੋ ਜੁਗਾੜ ਹਮ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਮ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਰਹਾ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਔਰੇਂਜ ਲੈ ਰਹਾ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵੋ ਸਭੀ ਹਮਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਤੀ ਤੋ ਏਕ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਣਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਵੋ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਕੋਈ ਔਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਕਾਮ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਮ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ੋ ਸੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸਕੋ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਜੋ ਕਾਮ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੇ ਔਰ ਅਗਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਾਮ ਨਾ ਕਰੇ तो फिर जितनी भी कमी पेशी हमारी खुराक में रह जाती है ना, वो पूरी की पूरी बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ जाती है कि आयरन कम है तो आंखें पीली हो जाएंगी, नाखून पीले हो जाएंगे, लाल नहीं रहेंगे, चेहरा पीला हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आनी शुरू हो जाएगी। कैल्शियम अगर कम है तो किसी और चीज से तो सिंथेसाइज हो नहीं रहा, क्योंकि न्यूक्लियस पूरा काम नहीं कर रहा, नहीं सिंथेसाइज हो रहा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जब हम टीथिंग की बात कर रहे तो मैंने ये आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम कहीं से ज्यादा ले लिया जाता है, खुराक में अब उतना आ नहीं रहा, दूध ही देना है बच्चे को, दूध में पूरा कैल्शियम पूरा हो नहीं रहा, तो फिर क्या है, कुदरत आंतनियों से कैल्शियम निकाल देती। अगर वो आंतनियों से कैल्शियम निकाल के दांत बनाना शुरू कर देगी तो फिर आंतनियां कमजोर हो जाएंगी, बच्चे को टट्टियां लग जाएंगी, डायरिया हो जाएगा। इसी तरह ही अगर उसने कहा कि नहीं आंतनियों में भी इतना है नहीं, तो फिर वो हड्डियों से निकालेगी, जो हड्डियों से निकालेगी तो दांत तो बनाना ही है, आगे काम तो चलना ही है, जो नई रेलवे लाइन बिछानी हो तो बिछानी ही है, तो अल्टीमेट हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जो बच्चा अभी चलने लगा था, जो बच्चा अभी टेबल के साथ स्टैंड खड़ा हो जाता था, अब वो नहीं होगा। तो मतलब ये एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने सेट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये जो न्यूक्लियस है असल में इसका काम क्या है। तो ये सभी चीजें जो शरीर में हमारी खुराक के जरिए नहीं जा रही लेकिन उनकी जरूरत है, और उनकी जरूरत को पूरा कैसे किया जाए, टू सिंथेसाइज, किसी न किसी और चीज का जुगाड़ बनाकर उन चीजों का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, उसकी पूर्ति की जाती है। और ये सब काम जो है इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और ये सब काम जो है ये हमारे इस न्यूक्लियस का, ये बात हमने आप सब लोगों को बता दी थी, और बड़ी बात मैंने बताई थी कि डीएनए इसमें होता है, डिसऑक्सीराइज न्यूक्लियस होता है जो हमारा कैरेक्टर को प्रिजर्व करता है, और इसकी भी डिटेल मैंने आप सब लोगों को बताई थी कि जब माँ और बाप के स्पर्म और ओवम मिलते थे तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, एक एक क्रोमोसोम में सैकड़ों ही जीन्स थे, और हरेक जीन्स का अपना ही करेक्टर था, वो अपनी ही खासियत थी उसमें, और जैसे जैसे सेल की डिवीजन होती है वो पूरा बराबर बांटा जाता है, ताकि जितने भी सिबलिंग्स हों, बहन भाई हों, उन सब में पूरी तरह उस तरह माँ बाप का करेक्टर आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। कुछ गुण, कुछ बच्चे बहुत शरीफ होते हैं, कुछ बच्चे बहुत शरारती नौटी हो जाते हैं, कुछ वो उस पर डिपेंड करता है कि वो जो जीन्स इसमें ट्रांसमिट हुए हैं वो जीन दूसरे में उतने ट्रांसमिट नहीं हुए हैं, क्योंकि हर एक जीन्स का अपना अपना करेक्टर है। एक एक बच्चे का कद लंबा हो गया, एक बच्चे का कद छोटा रह गया, तो किस बात का ये है कि वो जो जीन्स हैं उसमें क्रोमोसोम्स में जो जीन्स हैं, हर एक जीन्स के ऊपर जो प्रोटीन की कोडिंग होती, जैसे आप बाजार में सामान लेकर आते हैं ना तो वो चक्री सी बनी होती है लाइनों की, वो उसमें उसको स्कैन करते हैं तो पता हो इसकी इतनी कीमत है, इसकी इतनी कीमत है, ठीक इसी तरह का पूरा ढांचा जो है ये हमारे इस न्यूक्लियस में होता। तो ये बात मैंने आप सब लोगों को बताई, इसके अंदर का जो फ्लूड है, जितनी भी चीजें इसमें तैर रही होती हैं या जितनी भी चीजें इसमें प्रिजर्व रहती हैं आगे रिकॉर्ड के लिए, या आगे पेश करने के लिए, या आगे डिवीजन करने के लिए, या ट्रांसमिट आने वाली जनरेशन को देने के लिए, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्म का भी काम वही जैसे साइटोप्लाज्म का था, एक अलग ही एनवायरमेंट है, एक अलग ही तरह का माहौल है, जेली लाइक ये होता है, और इसी में वो सब चीजें तैरती रहती हैं। अगर ये खराब हो गया तो वो पूरी चीज खराब हो जाती है। इसी तरह ही हमने इसका मेन फंक्शन जो आपको बताया था कि एक तरह का स्टोर हाउस है, जितना भी रिकॉर्ड है हमारी पुराने फोर फादर्स का, उस सब को रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके रखा होता है, और जैसे ही आगे नई जनरेशन बनती है तो इसकी जो डिवीजन है वो इस तरह होती है कि सभी चीजें दोनों आगे आने वाली जनरेशन को बराबर ट्रांसमिट हो, बराबर डिवीजन उसमें हो। अब जो बराबर डिवीजन होगी तो आगे आने वाला चैप्टर वही आज मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन की जिम्मेवारी फिर किसकी है। इसमें तो समान है, इसने तो कहा मेरे पास इतना कहना है, इतना डीएनए है, इतने जीन्स हैं, ये सब ले लो भाई, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कौन करेगा, इसकी बात आज हम इस प्रोग्राम में आपसे करेंगे। और अगर वो डिफेक्ट हो गया तो बेशक बाप ने तो कह दिया कि मेरे पास इतने एकड़ जमीन है, इसको भाई बांट लो, और जो बांटने वाला है वो कहेगा किसी को ज्यादा रेतली जमीन दे दी, किसी को रोही भी की दे दी थी, किसी को पूरी जो है न्याय की जमीन दे दी, फर्क पड़ जाएगा, है ना। सो ये बांटने वाले के ऊपर आएगा। अब हमने ये कह दिया कि ये जो न्यूक्लियस है ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड उसके पास रखता है कि इसके पास क्या क्या है, और वो पूरी इंफॉर्मेशन रखता है। अगर ऐसी ना हुई तो उसके लिए मैंने बीमारियों की बात भी आपसे कर दी थी। ज्यादातर जेनेटिक बीमारियां न्यूक्लियस की बीमारियों की वजह से होते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, जिसको मैंने अल्जाइमर या पार्किंसन कहा था, या एलएस का एएलएस कहा था, और ये सब बीमारियां जो होती हैं, इनकोऑर्डिनेशन कहा था, ऑटो इम्यून डिजीजेस कहा था, ये सब पैदा होने वाली चीजें हैं। खास तौर पर इनका संबंध पिछली जनरेशन से होता है, और इसी की वजह से ये सब आगे वही न्यूक्लियस डिफेक्ट रहा, वही आगे ट्रांसमिट हुआ, फिर आगे आने वाली जनरेशन को उस तरह की बीमारियां हो सकती। तो ये मैंने शॉर्ट में आप सब लोगों को बता दिया। फिर उसके बाद मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया को भी मैंने डिटेल में आप सब लोगों को समझाया था कि भाई ये एक तरह के रॉड्स टाइप होते हैं, एक तरह के एनर्जी प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, एक तरह बिजली घर होता है, जो बिजली पहुंचाएगा तो सभी मशीनरी चलेगी, सभी कुछ अंधेरा दूर होगा, काम चलेगा। अगर ये नहीं रहेगी तो हमारी मोटर नहीं चलेगी, हमारी सिंचाई नहीं होगी, पानी नहीं आएगा, क्योंकि बिजली नहीं है इसलिए मोटर चल नहीं रही। सो वही काम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसके बारे में भी मैंने पिछले प्रोग्रामों में बताया था, और इसका काम ज्यादातर इफेक्ट ब्रेन पे होता है, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल ना हो, क्योंकि पूरा संचालन हमारी बॉडी का होता है वो ब्रेन से होता है, ब्रेन से नर्व इश्यू होती हैं, और वो जो रीढ़ की हड्डी के द्वारा पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, और अगर ब्रेन में ही इसकी कोई कमी पेशी रह गई, क्योंकि सेल तो ब्लड में भी है, सेल तो बॉडी के भी है, सेल तो हरेक अंग के ही है, वो मैंने आप सब लोगों को बता दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया हरेक सेल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही हरेक सेल की अंदर की कारकर्दगी जो भी करना है उसको नॉर्मल चल सकता है, नहीं तो अंधेरे में तो कोई काम नहीं ना होगा। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था लिवर के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के जितने भी कारोबार चलते हैं, अगर उनमें समझ कर लो कि लाइट ही नहीं है तो सारे के सारे काम जो हो पीछे रह जाएंगे, रुक जाएंगे। और अंदाजा लगाइए कि अगर ब्रेन के कारण काम रुक गए तो बड़ी बात हो जाएगी, डिमेंशिया वगैरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। और कई बार ऐसा होता है ना, बिजली इंटरकरंट आती, कभी आगे चले गई, आगे चले, इस तरह की कंडीशनें होती हैं, तो उस तरह की कंडीशन में क्या हो, एपिलेप्सी वगैरह की बीमारियां आ जाती हैं। मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है, जिसकी वजह से कभी करंट आ जाता है, कभी नहीं आ जाता, कोई कनेक्शन ढीला होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा। इसी तरह से दिमाग के अंदर जो सेल के अंदर जितने भी इस तरह के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जितने भी उसके डिविजन्स होती हैं, उसके हिसाब से ये बिजली सप्लाई करता है, और इसकी बिजली सप्लाई करने से ही दिमाग काम करता है, बिजली सप्लाई करने से ही मसल मांसपेशियां काम करती हैं, और अब मांसपेशियां या किसी अंग ने काम ने हार्ट ने काम क्या करना, सर्कुलेशन देना, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया उसके सेलों का नॉर्मल नहीं है तो फिर सर्कुलेशन नहीं जाएगा, फिर आगे नहीं जाएगी। इसी तरह लंग्स का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, अब वो उनका माइटोकॉन्ड्रिया ही सही नहीं है, चाहे बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, एनवायरमेंट से तो आ ही रही है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, लेकिन वो अंदर जा रही है, जाने वाला प्रोसेस भी कमजोर हो गया, फेफड़ों के अपर कंडीशन में क्या हो, एपिलेप्सी वगैरह की बीमारियां आ जाती हैं। मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं है, जिसकी वजह से कभी करंट आ जाता है, कभी नहीं आ जाता, कोई कनेक्शन ढीला होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा। इसी तरह से दिमाग के अंदर जो सेल के अंदर जितने भी इस तरह के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी उसके डिविजन्स होती हैं, उसके हिसाब से ये बिजली सप्लाई करता है, और इसकी बिजली सप्लाई करने से ही दिमाग काम करता है, बिजली सप्लाई करने से ही मसल मांसपेशियां काम करती हैं, और अब मांसपेशियां या किसी अंग ने काम ने हार्ट ने काम क्या करना, सर्कुलेशन देना, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया उसके सेलों का नॉर्मल नहीं है तो फिर सर्कुलेशन नहीं जाएगा, फिर आगे नहीं जाएगी। इसी तरह लंग्स का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, अब वो उनका माइटोकॉन्ड्रिया ही सही नहीं है, चाहे बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, एनवायरमेंट से तो आ ही रही है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, लेकिन वो अंदर जा रही है, जाने वाला प्रोसेस भी कमजोर हो गया, फेफड़ों के अपने माइटोकॉन्ड्रिया जिसको लाइट करनी थी वो मोटर चलानी

या किसी अंग ने काम ने हटने काम क्या करना, सर्कुलेशन देना। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया उसके सेलों का नॉर्मल नहीं है तो फिर सर्कुलेशन नहीं जाएगा, फिर आगे नहीं जाएगी। इसी तरह लंग्स का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, अब वो उनका माइटोकॉन्ड्रिया ही सही नहीं है। चाहे बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, एनवायरमेंट से तो आ ही रही है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, लेकिन वो अंदर जा रही है, जाने वाला प्रोसेस भी कमजोर हो गया। फेफड़ों के अपने माइटोकॉन्ड्रिया जिसको लाइट करनी थी, वो मोटर चलानी थी कि पानी निकले, उसे काम करना था कि फेफड़े सांस ले पाए, वो नहीं ले पाएंगे। तो ये सब चीजें इसकी वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी, स्ट्रोक, सीजर के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया था कि सीजर केवल एपिलेप्सी के नहीं होते, बहुत तरह के सीजर होते हैं। लेकिन हाँ, जितने भी सीजर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, या जर्क है बॉडी के एकदम जर्क, कई लोग सोते सोते भी एकदम जर्क मारना शुरू कर देते हैं, या कई बार काम करते करते जाग नींद नहीं है, काम कर रहे हैं लेकिन एकदम बांह झटक जाती है, टांग झटक जाती है, ये सब इस तरह की जो बीमारियां हैं ये इसकी वजह से होती हैं कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है वो नॉर्मल काम नहीं कर रहा। इसकी स्ट्रक्चर की बात भी मैंने आप सब लोगों को बता दी थी, और ये भी मैंने कह दिया था कि इसके ऊपर भी एक लेयर, डबल लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है। जितने भी ऑर्गेनल्स सेल के अंदर होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सब उस साइटोप्लाज्म के एनवायरमेंट में रहते हुए उससे सेपरेट रहते हैं, क्योंकि इनका अपना किला होता है, इनकी अपनी चार दीवारी होती है, वो डबल लेयर दीवार होती है। जैसे सेल का मेम्ब्रेन था डबल लेयर था, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन था डबल लेयर था, इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया वाले जो रॉड टाइप है, ये रॉड टाइप होते हैं, वो ये भी डबल लेयर्ड होते हैं, और ये रोशनी देने का या एनर्जी देने का काम करते हैं, और इस रोशनी से, इस एनर्जी से हमारे शरीर का जो पूरा काम है वो उसी तरह चलना शुरू हो जाता है। और पक्की बात होगी कि इसका काम क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस करना, और इसी से सभी चीज को रेगुलेट करना, इसी से ही हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, आवाजाही, लेना देना जितना भी है हमारे शरीर का। अब मान लिया जाए ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो लोगों को कब्ज हो जाती है, मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया सही नहीं तो किसी को डायरिया भी लग सकता है। तो ये चीजें क्या इंडिकेट कर रही, चाहे अगर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं है तो ये इसी की वजह से है कि करंट नॉर्मल नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर मैंने आप सब लोगों को बताया भाई इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है, फंक्शन का भी पता लग गया। और ये भी एक बात और इम्पोर्टेंट बात मैं भूल ना जाऊं, वैसे ये मैंने कही है, रिपीट कर दूं कि जितना गार्बेज बनता है ना सेल के अंदर, सेल मरते हैं डेली रोजाना, कुछ सेल मरते हैं कुछ सेल नए पैदा होते हैं, क्योंकि रूटीन है बोन्स के अंदर, बड़ी बड़ी बोन्स हैं उनमें सेल बन ही रहे हैं, रोजाना बन रहे हैं। और एक सेल की उम्र कितनी है, 120 डेज, 120 दिन के बाद जो आज सेल बना है उसको मर जाना है। और डेली सेल बनते हैं, जैसे राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, हर 6 साल बाद वो जो मेंबर है बदलते रहते हैं, नए आते रहते हैं और दूसरे रिटायर होते रहते हैं। इसी तरह ही ये जो सेल डेथ है ये एक नॉर्मल कर्म है, आदमी को जो बना है उसको मरना ही है। इसी तरह सेल के अंदर भी वो सेल की जो डेथ है वो होनी ही है, और जो उसका गार्बेज बचेगा बाकी सारा, जिसको हम जो तीसरे पाशा की तरह ये कहते हैं कि क्या करो उसको फुल हर साल पाने, उसमें जो भी आपका राख हो उसको इकट्ठी कर लो और चलते हुए पानी में उसको डाल दो, ठीक उसी तरह ये जो चलते हुए पानी में डालने वाला काम या उसको बर्न आउट करके शरीर से सेल से निकालने वाला काम है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है। आजकल तो बिजली के चूल्हे से लाश जलाई जाती है, तो ये बिजली का काम जो करने वाला है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी ये करता है। तो फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह किसी भी चीज को चालू करने के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम आदमी हैं एक दमी, और दम किससे चलता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन शरीर में जाएगी तब हम चल पाएंगे, हमारे अंदर चर्बी फैट जो भी कुछ प्रिजर्व तो रहता ही है, इसीलिए बिना खुराक के भी हम बहुत सारे काफी, दर्शन सिंह पेरूमान 81 डेज जिंदा रह गया था, बुखार खुराक ही रह गया था। इसी तरह ही हम लोग, हमारे शरीर की जो भी बंतर है इसमें वो शरीर की बंतर के तत्व तो हैं ही ना, जब तक इसकी एग्जिस्टेंस है, जब ये शरीर दिखाई देता है तो इसका मतलब उसके बनाने वाले तत्व उसके अंदर हैं। और एक एक अंग से जब आप भूख हड़ताल करते हो या

जब आप मन व्रत रखते हो तो एक एक अंग से वो चीजें ली जाती हैं और लेने के बाद उनको फिर सिंथेसाइज किया जाता है कि शरीर की एनर्जी पूरी करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, वो सिंथेसाइज होके जब तक जीवन चलता रहता है बंदा मरता नहीं है। अल्टीमेट जब वो स्टॉक खत्म हो जाता है तब किसी आदमी की डेथ होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि शरीर में मटेरियल तो है, अब नहीं बाहर से खुराक आ रही तो ना सही, लेकिन इसको तो ऑक्सीडेशन किया जाए ना। तो उसके लिए सबसे पहला काम मैंने कहा था ऑक्सीजन का कि एक्सरसाइज की जाए, एक्सरसाइज की जाए। उसके बाद अगर खुराक दी जा रही है, क्योंकि सभी तो मरने वक्त पे नहीं है ना, खुराक दी जा रही है तो खुराक इस तरह की दी जाए जो कम मात्रा में जाने के बाद भी ज्यादा एनर्जी पैदा कर सके। जैसे जो है ना पानी, वो हर 2-3 मिनट बाद हजम हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, असिमिलेट हो जाता है। जो है कार्बोहाइड्रेट्स, इसको 3-4 घंटे में हमारे बॉडी से इसका इवेपोरेट होना या गार्बेज के तौर पर, रेक्टम की तौर पर इंटेस्टाइन लार्ज पोर्शन जो है इंटेस्टाइन का उसमें चले जाना, ये अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद इसका कोई काम नहीं रह जाता। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो लंबे समय तक, जैसे पत्थर के कोले की एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी थी कि पत्थर का कोला है वो अगर जलता है तो लाल हो जाता है तो लंबे समय तक वो हीट देता रहता है, और लकड़ी का कोला है तो वो जल्दी बुझ जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, उसकी हीट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो ये जो जितनी है, ये जितनी भी खुराक होती है ना, उसका मतलब है एनर्जी प्रोड्यूसिंग, हीट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। और हीट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस ये जो हैं, आलू है या सब्जी है या जो भी कुछ खाते हैं, इनकी एक लिमिट है। प्रोटीन की लिमिट इनसे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लंबे तक वो हीट उसको रख सकते हैं। तो क्या जब आपको ये लगे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया वीक है जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो रही है या स्ट्रोक हो रहा है या सीजर्स हो रहा है या मानसिक तवाजन सही नहीं है, तो उस बंदे को सबसे पहली बात तो ये करो कि उसको खुराक एनर्जी वाली दो, एक्सरसाइज भी करवाओ, एनर्जी वाली खुराक दो। तो एनर्जी वाली खुराक क्या हुई? प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट। उसके बाद जितनी भी चीजें टॉक्सिसिटी पैदा करती है, वैसे ये जब हम बता रहे थे तो मैंने आपको टी के बारे में भी कहा था, हालांकि टी हमारी नॉर्मल खुराक का हिस्सा नहीं है, एक स्टिमुलेटर है कैफीन के तौर पर। और इस तरह की जितनी भी, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज पहले दोस्त के तौर पर हमारे साथ चल रही है लेकिन आप दुश्मनी निभा रही। इसीलिए बोलते हैं कि दाना दुश्मन अच्छा जो मूर्ख दोस्त थे, क्योंकि मूर्ख दोस्त का कोई पता नहीं कब नुकसान कर दे, और जो दाना दुश्मन है वो उस वक्त वार करेगा जब उसको पता चले कि अब मैं इसका नुकसान कर ही सकता हूं। जब उसको पता हो कि नहीं इसका नुकसान मैं नहीं कर सकता तो वो दुश्मनी नहीं जताएगा, वो दोस्ती जताएगा ताकि इसका भरम बना रहा है मेरे ऊपर, मेरे पर ये शक ना करे। लेकिन जो दोस्त होता है ना उसका तो पता ही नहीं चलता, उसके पर तो हम विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं तो पता नहीं कब वो नुकसान कर दे। वही बात इस डाइट के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोग रूटीन में बहुत सी चीजें खाते हैं, कोई बात नहीं, तंदुरुस्त शरीर है, उसको नहीं जरूरत है तो उसको निकाल देगा, टट्टी के रस्ते, पेशाब के रस्ते, सांस के रस्ते, पसीने के रस्ते निकाल देगा। लेकिन अगर वो चीज हमारा शरीर पूरा काम नहीं कर रहा, निकाल नहीं रहा, तो गर्भ के तौर पे शरीर पे रुक जाएगी और उसके बाद उसकी टॉक्सिसिटी जहरीला मादा बन जाएगा। इसलिए क्या करें, खुराक डाइट तो आपने मेंटेन कर ली, उसके बाद फिर ऐसा करें कि भाई जितनी भी चीजें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाली हैं उनको एकदम बंद कर दें, एकदम बंद कर दें, ताकि वो टॉक्सिसिटी जितने भी दोस्त है, कोई बात नहीं भाई, 10 दिन भाई इसके पास नजदीक नहीं आना है, दोस्त है, रोजाना चाय पीते ही हैं, नहीं गुजारा होता, लेकिन एक बार उसको अलग करके देखे कि होता क्या है, मुझे इसकी जरूरत कितनी है और मैं इसके बिना कैसे चल सकता हूं कि नहीं चल सकता हूं। क्योंकि शरीर में एक ऐसी समर्था है कि अगर एक चीज खुराक वाली आप उसको नहीं देते, दूसरी चीजें शरीर में जा रही हैं, तो ये उनसे सिंथेसाइज करके जरूरत की चीजें बना लेगी। मैंने अभी कहा जब इसकी न्यूक्लियस की बात कर रहा था कि सिंथेसाइजिंग वाला प्रोसेस भी कुदरत ने हमारे शरीर में डाला हुआ है कि नहीं, अगर सही चीज मुझे आयरन चाहिए,
आयरन नहीं मिल रहा, विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी नहीं मिल रहा, तो जितनी चीजें अंदर जा रही हैं उनसे उसने सिंथेसाइज करके काम चला लिया। आप टी नहीं पीते, अब टी पी रहे थे, अब मैंने आपको कहा कि नहीं भाई, क्योंकि हालात इस तरह बन गए हैं कि अभी हमको सभी चीजों को अलग करना होगा, तो फिर क्या करेंगे? अलग करेंगे तो फिर चाय को भी, क्योंकि चाय भी शरीर की खुराक का हिस्सा नहीं है, इसको भी अलग कर दें। उसके बाद पता चलेगा आपको कि आपको इसकी कितनी जरूरत है। अगर नहीं जरूरत तो फिर अलग कर दो, क्योंकि है तो टॉक्सिसिटी ही ना। कोई भी चीज जो जबरदस्ती आपसे काम करवाती, चाय जबरदस्ती हमसे काम करवाती है ना, क्योंकि हम सुस्त होते हैं तो चाय कप पी लो थोड़ी चुस्ती आ जाए, तो जबरदस्ती हमें उस तरफ लगाती है। और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको निकाल दे। उसके बाद जितनी भी दवाइयां, जितनी भी एंटीबायोटिक, जितना भी ऐसा कुछ खा रहे हैं, एक बार उसको स्टॉप करके देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज की वजह से क्या क्या चीज हमारे शरीर में बीमारी के तौर पर बढ़ रही है या कम हो रही। ऐसे होता है कि लोग बड़े लंबे समय से, हमारे गांव में हम देखते थे कि लोग बीका सोड़ के कैप्सूल खाए जा रहे हैं, लगातार ही खाई जा, जरूरत है नहीं, लगातार ही खाई जा रहे, और डॉक्टर के पास उनको तो पता नहीं है कि बी कम्प्लेक्स जितना बॉडी को चाहिए वो उतना रख लेगा, बाकी पेशाब के रस्ते जल्दी खारिज हो जाएगा, पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा, और डॉक्टर को वो कंप्लेन कर रहे कि डॉक्टर जी मेरा पेशाब पी रहा था। अब डॉक्टर क्या समझे इसको पी लिया हो गया? ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीजें जानने के लिए जरूरी ये है कि जितनी भी खुराक के तौर पे तत्व आप ले रहे हैं, शरीर के अंदर दे रहे हैं, उसको भी एक बार अलग करके देखें, फिर उसके बाद उसकी खुराक निर्धारित करें, और ये देखें कि पहले वाली जो चीज जा रही थी उसके ना जाने से शरीर में कोई कमी पेशी आ रही है, उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है, तो इसका मतलब फालतू हम ले रहे थे ना, और जितनी भी चीजें फालतू हम ले रहे हैं वो टॉक्सिसिटी होती है। तो अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर ज्यादा लोड ना डालें, ज्यादा बोझ ना डालें। जितनी रोशनी की जरूरत है यार उतने बल्ब जगाओ, आपका मीटर उतना लोड नहीं ले रहा तो ज्यादा हर जगह जगह पर रोशनी करने की क्या जरूरत है, जहां काम कर रहे हो वहां रखो, बाकी बंद कर दो। तो ये चीज, उसके बाद मैंने ये कहा था कि CQ10 के नाम पे इस तरह की कंपोजिशन मिलती है, या एल कार्सिटाइन वगैरह के नाम पे मिलती है, या एल सिट्रोलाइन के तौर पे मिलती है, ये और हमारी खुराक में बहुत सी चीजें मैंने बताई थी, हदवाना है जिसको वाटरमेलन हम लोग बोलते हैं, विटामिन सी है, ये सब चीजें आप रूटीन में दे सकते हैं, या विटामिन जो है उस हालात में। यंग एज में मैंने ये कहा था कि विटामिन पर शरीर को मत डालो, अगर बनी बनाई खीर दोगे तो जिस अंग को, जिस चीज को सिंथेसाइज करना है वो बंद कर देगा कि बनी बनाई खीर मिल रही मैं क्यों कष्ट करूं भाई। अगर जैसे इंसुलिन वगैरह लेनी शुरू कर देते ना डायबिटिक्स वगैरह लोग, और अल्टीमेट वो एडिक्टेड हो जाते हैं, कारण ये होता है डे टू डे एडिक्टेड हो जाना किसी भी इंसुलिन का, पेंक्रियास जितना काम कर सकती थी उतना भी नहीं करेगी, ये बनी बनाई मिल रही तो मैं क्या करूं। इसी तरह बहुत से अंग जो एंजाइम तैयार करते हैं वो एंजाइम तैयार नहीं करेंगे और चुप हो जाएंगे, और अल्टीमेट जब वो दवाई आप छोड़ेंगे तो अल्टीमेट आपको बैड इफेक्ट्स होंगे। इसीलिए बिना जरूरत के कोई भी चीज लेनी वो टॉक्सिसिटी ही पैदा करती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी दवाइयां, जब इस तरह का हालात हो, किसी को भी एपिलेप्सी है, किसी को भी सीजर्स हो रहे हैं, किसी को भी डिमेंशिया की पहली स्टेज, जरूरी नहीं कि सभी एकदम डिमेंशिया पे पहुंच गए, डिमेंशिया तो आखिरी स्टेज है पागलपन की। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे जैसे बुजुर्ग जो लोग हैं, अब आप 70 हो गए, चले जा रहे हो कहीं रास्ते में और आपको याद नहीं, यार पता नहीं कौन सी रोड है, मैं किधर जा रहा हूं, आगे मैं तो घर जा रहा था, ये पता नहीं रोड कौन सी आ गई। रोजाना उस रोड पे आप गुजरते हो, रोजाना जो काम आप करते हो उसमें ही आपको भ्रम हो जाए तो ये समझो आपका माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, एनर्जी लाइट पूरी नहीं दे रही है, तो उसी वक्त आपको फिर ये खुराक बदलनी होगी, उसी वक्त आपको फिर जो दवाइयां खाए, खासतौर पे आजकल हालात क्या है कि जो भी इस उम्र के आम लोग है ना कुछ तो खा ही रहे हैं, रेयरली कोई होगा वो कहेगा कि नहीं मैंने तो कभी दवाई ली नहीं। पुराने जमाने में तो बहुत लोग मिल जाते थे जो बोलते थे कि नहीं मैं तो दवाई लेता ही नहीं, मैंने तो आज तक कभी एस्पिरिन की गोली भी नहीं दी। लेकिन अब इस तरह के आदमी को ढूंढना बड़ी मुश्किल की बात होगी,
तकरीबन कुछ ना कुछ वो ले ही रहे हैं,